0: आत्मा एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि नहीं होती, पर जिसका केंद्र शरीर में है। मृत्यु इस केंद्र का स्थानांतर मात्र है। परमात्मा एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि कहीं भी नहीं है, पर केंद्र सभी जगह है। जब हम शरीर के इस समीप केंद्र से बाहर निकलने में सफल हो सकेंगे, तभी हम परमात्मा की अपने वास्तविक रूप की प्राप्ति कर सकेंगे। आत्मा न कभी आती है, न कभी जाती है, न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। प्रकृति ही आत्मा के सम्मुख गतिशील है और इस गति की छाया आत्मा पर पड़ती रहती है। भ्रमवश आत्मा सोचती रहती है कि प्रकृति नहीं, वही गतिशील है।
1: नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, आज आप बने हुए हैं मेरे साथ यानी आपकी रेडियो साथी गीची कनिक के साथ। हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:55 हो रहे हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की पहली प्रसारण सभा। आज सन 2024 की मई महीने की 8 तारीख है और दिन है शुक्रवार। तो चलिए दोस्तों, आज के इस हसीन दिन की शुरुआत करते हैं अरुण एफएम के साथ, जहां होती है दिल से दिल की बात। श्रोताओं, आज के प्रभातकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ हैं स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक तीतांगजंग तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम। हर रोज की तरह आज भी हम इस सभा में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अनेकों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ साथ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। और अब इस शुभकामना के साथ कि आज का आपका दिन बहुत ही मंगलमय हो, आइए एक नजर डालते हैं इस सभा में प्रसारित कार्यक्रमों की रूपरेखा से।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर बाद यानी 6 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। 6:05 पर प्रसारित होगा अंग्रेजी में समाचार। 6:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम भक्ति गीत। 6:40 पर प्रसारित होगा गालो बोली में समाचार।

कार्यक्रम सुबह सवेरे आप सुन पाएंगे 6:40, 7:10 पर आप सुन पाएंगे आपतानी बोली में समाचार।

7:15 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट। 7:35 पर आप सुन पाएंगे तागिन बोली में समाचार। कार्यक्रम सदाबहार प्रसारित होगा 7:40 पर।

8 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, 8:30 पर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी सिलोंग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज।

0: कार्यक्रम हेलो ईटानगर आप सुन पाएंगे 8:40 पर। 9 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। नौ बजकर 10 मिनट पर प्रसारित होगा कार्यक्रम फिल्मी गपशप। 10 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। 10:10 पर आप सुन पाएंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। 11 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तो दोस्तों, ये थी हमारी इस सफर में पेश होने वाली कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Union Home Minister Amit Shah will arrive in Kolkata today. He is scheduled to attend the meeting with the newly elected BJP MLAs, during which the party's legislative leader will be selected. The new Chief Minister of the State and the Council of Ministers will be sworn in tomorrow on the birth anniversary of Kavi Guru Rabindranath Tagore. Meanwhile, preparations are underway for the swearing-in ceremony at the Brigade Parade Ground in Kolkata. Necessary administrative meetings are being held and tight security arrangements are being put in place for the occasion. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, senior BJP leaders and chief ministers from other states are expected to attend the oath-taking ceremony. President of Vietnam Tho Lam has emphasized that India and Vietnam together have a significant opportunity to play a pivotal role in the global supply chain in today's changing world order. Addressing the India-Vietnam Business Forum in Mumbai, Mr. Lam highlighted that the current global scenario is indeed a challenge but also an opportunity to elevate cooperation between India and Vietnam to a new level. Speaking on the occasion, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis asserted that entrepreneurs, investors and professionals from the technology and manufacturing sectors in countries like India and Vietnam will shape the future of Asia. India and Vietnam have discussed to deepen cooperation in emerging technologies, innovation, research and startup ecosystems. Minister of State for Science and Technology, Jitendra Singh, held bilateral talks with his Vietnamese counterpart, Dr. Bu Hai Hoa, in New Delhi yesterday. During the discussions, both sides exchanged views on cooperation in artificial intelligence missions, cybersecurity frameworks, innovation ecosystems and technology transfer initiatives. The meeting also reviewed ongoing academic and institutional engagements between the two countries, including collaborations involving research institutions, innovation hubs and technology incubation platforms. Addressing the meeting, Dr. Singh said that the comprehensive strategic partnership between the two countries has gained new momentum over the last decade. He said that around 10 researchers from Vietnam have availed fellowships under the India-ASEAN Research and Training Fellowship Program. Foreign Secretary Vikram Misri took part in a trilateral meeting between India, France and United Arab Emirates in Abu Dhabi yesterday, along with Reem Al Hashmi, Minister of State and Special Envoy for India, and Martin Bryans, Secretary General of the Ministry for Europe and Foreign Affairs of France. The Ministry of External Affairs said the three countries agreed to strengthen their partnership and work on a roadmap with clear timelines. During the visit, Mr. Misri also met Khaldun Al Mubarak, Managing Director and Chief Executive Officer, Mubadala Investment Company, to discuss investment cooperation. Saudi Arabia suspended U.S. military access to its bases and airspace, forcing President Donald Trump to abruptly abandon his plan to escort ships through the Strait of Hormuz. The two U.S. officials

श्रोताओं, इसी के साथ ही कार्यक्रम भक्ति गीत यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दूं, आप हमारे साथ बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:40 पर आप सुन पाएंगे गालो बोली में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार श्रोताओं, सुबह सवेरे कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त उनकी चिकनी। और आज की इस खूबसूरत सुबह में हम मिलेंगे कुछ हेल्दी और पॉजिटिव बातों के साथ।

दोस्तों, सुबह सुबह की ताजी हवा और मन में नए दिन की नई उम्मीद, ये सब हमें एक नई शुरुआत का तोहफा देते हैं। तो आइए सुबह की शुरुआत करते हैं योग, व्यायाम और हेल्दी टिप्स के साथ।

तो कहते हैं योग केवल व्यायाम नहीं, ये जीवन जीने की कला है। अगर आप दिन की शुरुआत 5 से 10 मिनट के प्राणायाम से करते हैं तो आपका दिमाग साफ, मन शांत और शरीर एक्टिव हो जाता है। आज मैं आपको एक छोटा सा योग टिप दे रहा हूँ, वो है भ्रामरी प्राणायाम। दोस्तों, इसमें आप अपनी आंखें बंद करके, कान बंद करके गहरी सांस लें। ये तरीका तनाव कम करता है, दिमाग को शांत करता है और सुबह की एक शानदार शुरुआत देता है। और हाँ दोस्तों, योग करते समय हमेशा खुली हवा में, खाली पेट और आरामदायक कपड़ों में रहें।

दोस्तों, आपको एक बार फिर से बता दूं कि आप हमारे साथ बने हुए हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे में और आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर। और दोस्तों, आज का हेल्थ टिप ऑफ द डे है सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना। गुनगुना पानी पीना आपके पाचन को बेहतर बनाता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और स्किन ग्लोइंग बनाता है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा नींबू और शहद भी डाल सकते हैं। बस ध्यान रखें, बहुत ज्यादा गर्म पानी ना पिए वरना पेट में जलन हो सकती है। और हाँ दोस्तों, फिटनेस के साथ साथ सुरक्षा भी जरूरी है, इसीलिए जॉगिंग या साइकिलिंग करते समय बहुत तेज म्यूजिक हेडफोन में ना सुने, क्योंकि आपको ट्रैफिक या आसपास की आवाजें भी सुननी चाहिए। और घर में योग या एक्सरसाइज करते समय सही मैट और सपोर्टिव जूते पहने ताकि चोट से बचा जा सके। तो दोस्तों, याद रखिए, स्वस्थ ही सबसे बड़ा धन है। आज ही से छोटी छोटी हेल्दी आदतें अपनाइए और देखिए कैसे आपका दिन और आपकी जिंदगी बदल जाती है। चलिए इसी हेल्दी मूड के साथ सुनते हैं एक और प्यारा सा नगमा।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ दिल से दिल की बात।
1: तो दोस्तों इसी के साथ ही कार्यक्रम सुबह सवेरे यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपको बता दूं आप हमारे साथ बने हुए हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर आप सुन पाएंगे आपातानी बोली में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: Si Akasmanita Nagarjiruk latan programa tami beli-beli. Kapi japa surunun tanu puyumi tapatado. Seru kapuyu luku ini si, doyuangka. India hi ini kuna loho first anniversary of Operation Sindoor me mark mane halalukone. Hoka occasion na loho. Prime Minister Narendra Modi hi lunene. Country hi state pass ho dola. Ho terrorism meka repeat musane me resolve mala. Ho ecosystem hoka enable musane me dismantle mane halalukone. और सोशल मीडिया पोसो ऑपरेशन सिंदूर का 1 ईयर कंप्लीशन और मिस्टर मोदी हेलो ने ने इंडियन आर्म फोर्सेस अतंग है का ऑपरेशन में मेदो अनपैरेलल करेज प्रिसिशन ला रिजॉल्व में डिस्प्ले मने हला लुकोने हो मलो ने ताने फोर्सेस अतंग पहलगा मोका इनोसेंट इंडियन आदमी का अटैक मने में बीटिंग रेस्पॉन्स बने हला लुकोने हो मिस्टर मोदी हेलो ने ताने Entire nation her armed forces atami moluka chikoharo paka warhoka pakopa salute munyadu hala lukone. Ho Prime Minister Hilunitana, Operation Sindoor India ka firm response against terrorism mi reflect mudo. Ho molu national security mi safeguard mudu pa commitment mi vine hala lukone. Governor Lieutenant General K.T. Parnek moka warm greetings mi moka Me members and volunteers of the Indian Red Cross Society, Arunachal Pradesh State Branch La Humanitarian Services Oka devoted ni atami special occasion of World Red Cross Day aloho extend mune hala lukone. Homo express malalunena sika year ka team keeping humanity alive and united for humanity further reinforce spirit of compassion, solidarity and selfless service Red Cross movement across the world me define mudu hala lukone. Homo ka message so Governor Lunen World Red Cross Day kapane opportunity me vila munuka commitment to the noble ideals of humanity, impartiality, neutrality lang voluntary service me renew mala ho million meals atami inspire mala Elevating suffering la, building resilient communities so mune hala lukone. Under the Vibrant Village Program NCC cadet ata, Sisika currently ongoing NCC camp at JNV Medong Hoka attend Munatahe Medong Village in Kamle District ho educational and cultural enriching experience pa visit mune hala lukone. हो कमांडिंग ऑफिसर रॉपर्स एपीबीएन एनसीसी का आगे हो एएनओस सीटीओ अजेला पीआई स्टाफ ऑफ एनसीसी हु इंगने खला लुकोने हो का विजिट का एम हु केदेस आदमी रूरल लाइफ इंडिजिनस ट्रेडिशन ला रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश में एक्सपोजर मकेनेन दुपामने खला लुकोने नीति आयोग इनेकुन अलोहो पॉलिसी रिपोर्ट ऑन स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया Temporal analysis and policy roadmap for quality enhancement me release mubune khala lukone. Oka report he policy document ho comprehensive decade long analysis of India's school education system across key parameters such as access and enrollment, infrastructure, equity and inclusion la learning outcome me present mune khala lukone. Oka report he detailed policy roadmap comprising 13 comprehensive recommendation me provide mane hala lukone department of fire and emergency services moluka single window clearance system me operationalize mane hala lukone ho department ka initiative lana me congratulate bila home minister mamang natung he social media post so inekun aloho lunene he ka operationalize important step towards Transparent and technology-driven governance in Arunachal Pradesh me mark mane hala lukone. Ho minister hilunetana haka initiative hu government ka parm commitment me bila ho digital governments me strengthen mala ho 100% e-office implementation me across department hoka mune me reflect mudo hala lukone. Inikun aloho dawanka vivanta ganda hoka alolonye रीजनल वर्कशॉप ऑन डेवलपमेंट ऑफ द बुद्धिस्ट सर्किट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मजा बुने को हला लोगों ने. डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन कोलाबोरेशन विद साउथ एशिया वुमेन नेटवर्क ला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तवांग ऑर्गेनाइज मगने खला लोगों ने होगा वर्कशॉप बिल्डिंग ए वाइब्रेंट बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट कनेक्टिंग नेपाल भूटान श्रीलंका ला की बुद्धिस्ट डेस्टिनेशन अक्रॉस इंडिया हो थ्रू वुमेन रेड रूरल टूरिज्म मॉडल हो पा फोकस मने खला लोगों ने होसक इनिशिएटिव में कलाने का एम है सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स में प्रमोट मला हो कल्चरल हेरिटेज में प्रिजर्व मला हो रीजनल कॉपरेशन में स्ट्रेंथन मुदपा मने खला लोगों ने असुर का तन पुलु को सुन हम कने सिसी बुसी प्रोग्राम में मिलिम बली कपेजा पसुर नुनु हागे को मौला लिगंग आन्या का बसने में तपाकेंदो
1: श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आपातानी बोली में समाचार. आपातानी श्रोताओं की आगे के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर. आपको बता दूं आप हमारे साथ बने हुए हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर. और अब वक्त हो चला है कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट का.

चलिए दोस्तों, कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट की शुरुआत करते हैं हमारे खास सेगमेंट से, यानी आज का इतिहास से। सन 1360 में आज के दिन इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ब्रिटने की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। सन 1521 में आज के दिन वर्म्स की संसद ने मार्टिन लूथर के खिलाफ नियम लागू किए थे। सन 1541 में आज के दिन मिसिसिपी नदी की खोज हर्नांडो दे सोटो ने की थी।

सन 1624 में आज के दिन रोमन सम्राट फर्डिनेंड दो और राजा बेथलेन गेबोर के बीच वाइन्ना की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। सन 1660 में आज के दिन संसद द्वारा चार्ल्स स्टुअर्ट को इंग्लैंड का राजा चार्ल्स दो घोषित किया गया था। सन 1741 में आज के दिन फ्रांस और बवारिया के बीच नाइनफेनबर्ग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए।

सन 1933 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश अत्याचार को समाप्त करने के उद्देश्य से 21 दिनों का उपवास शुरू किया था। सन 1949 में आज ही के दिन पश्चिम जर्मनी के संविधान को मंजूरी दी गई थी।

सन 1963 में आज के दिन अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने पड़ोसी देशों के हमलों से इसराइल को समर्थन देने की पेशकश की थी। सन 1985 में आज के दिन फ्रांस ने मुरुराव अटोल में एक परमाणु परीक्षण किया था। तो श्रोताओं, इतिहास के पन्नों से आज बस इतना ही, और अब आइए रुख करते हैं राजधानी ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों की ओर। द अरुणाचल टाइम्स की पहली हेडलाइन से, सीएम अनाउंसेस इरेक्शन ऑफ स्टैच्यू इन मेमोरी ऑफ ग्यामर पादांग। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गुरुवार को घोषणा की कि अरुणाचल प्रदेश सरकार सार्वजनिक संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में उनके योगदान को मान्यता देते हुए स्वर्गीय ग्यामर पादांग की याद में एक प्रतिमा खड़ी करेगी। सोशल मीडिया पर निर्णय की घोषणा करते हुए खांडू ने कहा कि पादांग के प्रयासों ने वर्ती प्रणाली में अंतराल पर ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को मजबूत करने में योगदान दिया। द अरुणाचल टाइम्स की अगली हेडलाइन से, ब्रोस प्रोजेक्ट वार्तक कंप्लीट 66 इयर्स ऑफ गार्डिंग बॉर्डर्स। सीमा सड़क संगठन ब्रो की परियोजना वार्तक ने गुरुवार को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया और अरुणाचल प्रदेश और आसाम के दूरदराज और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में राजनीतिक सीमा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और साल भर कनेक्टिविटी बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। एक रक्षा प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि परियोजना वर्तक, जो वर्तमान में लगभग 2066 किलोमीटर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों का रखरखाव करती है, दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास का समर्थन करने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ परिचालन तैयारी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अरुणाचल टाइम्स की अगली हेडलाइन से, अरुणाचल पेनोरामा कंक्लूड्स एट आरजीयू। 6 मई की शाम राजीव गांधी विश्वविद्यालय आरजीयू में आयोजित अरुणाचल पेनोरामा के 9वें संस्करण में समापन सत्र ने राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता के दो दिवसीय प्रदर्शन के अंत को चिन्हित किया। सभा को संबोधित करते हुए छात्र कल्याण डीन प्रोफेसर एन.एन. हीना ने छात्र समुदाय को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया और उनसे पेनोरामा से लाभ करने का आग्रह किया। इसके बाद पेनोरामा नृत्य प्रदर्शन हुआ, जो राज्य की जनजातियों का एक रंगीन और मधुर प्रतिनिधित्व था। आरजीयू एसयू के महासचिव पूरा मामुंग ने विश्वविद्यालय विरादरी के प्रत्येक सदस्यों को उनके सक्रिय सहयोग के लिए धन्यवाद दिया, जिसने कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित की। दोस्तों, राजधानी ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज बस इतना ही। तो बने रहिए हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम मॉर्निंग इंफरटेनमेंट का पहला नगमा।

तो दोस्तों इसी के साथ ही कार्यक्रम मॉर्निंग इंफोटेनमेंट यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दूं अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे तागिन बोली में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें और बने रहे अरुण FM 103.1 MHz।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार। और सुबह की इस प्यारी से शुरुआत में चलिए एक नजर डालते हैं आज के मौसम पर। दोस्तों, आज ईटानगर में सुबह का मौसम काफी सुहाना और फ्रेश बना हुआ है। इस वक्त तापमान लगभग 21 डिग्री सेल्सियस है और आसमान बिल्कुल सनी नजर आ रहा है। हवा हल्की चल रही है, इसीलिए मॉर्निंग का वेदर काफी प्लेजेंट फील हो रहा है। दिन में टेम्परेचर बढ़कर करीब 58 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि शाम और रात में हल्की ठंडक का एहसास रहेगा। सुबह के बाद कुछ इलाकों में हल्की बारिश के चांसेस भी बन सकते हैं, तो अगर आप घर से बाहर निकलने का सोच रहे हैं तो छाता साथ रखना ना भूलें। दोस्तों, ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से मौसम थोड़ा ह्यूमिड फील हो सकता है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि एयर क्वालिटी काफी अच्छी बनी हुई है। तो दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह को और भी हसीन बनाते हैं एक सदाबहार गीत के साथ। बने रहिए हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सदाबहार गीतों का आनंद लेते हैं।

तो दोस्तों, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दूं, अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे, यानी 8 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, 8:30 पर प्रसारित होगा आकाशवाणी सिलोंग केंद्र से नोटिस न्यूज। बने रहे अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसी के सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 वैशाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वित्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन्ह और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद वगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
7: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का यह बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
3: धन्यवाद निखिल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर बीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। बीजेपी सेंट्रल ऑब्जर्वर फॉर वेस्ट बंगाल अमित शाह टू मीट न्यूली इलेक्टेड पार्टी एमएलएस इन कोलकाता टू इलेक्ट लेजिस्लेटिव लीडर टुडे। Deadlock continues in Tamil Nadu over government formation as MLAs of VCK, CPI and CPIM to meet on lending support. President of Vietnam Tho Lam emphasizes India-Vietnam role in global supply chain at Business Forum in Mumbai. Commerce Minister Piyush Goyal reviews initiatives to strengthen India's position in global agriculture landscape. Saudi Arabia suspends US military access to its bases and airspace. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants beat Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method at Ikana Stadium. BJP Central Observer for West Bengal and Union Home Minister Amit Shah will meet newly elected party MLAs in Kolkata to elect legislative leader today. We have more from a correspondent.
9: After its sweeping victory in Bengal, the BJP is seeking to turn the swearing-in ceremony into a political event of national significance. The first BJP government in West Bengal will take oath on Saturday, the 25th Boishakh, at the Brigade Parade Ground. Preparations for the stage and security arrangements at Brigade began on Wednesday itself. According to BJP sources, Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Nitin Gadkari, JP Nadda, BJP President Nitin Naveen and several other central ministers may attend the ceremony. Chief ministers and deputy chief ministers of various BJP and NDA ruled states are also being invited. On Friday, a meeting of the newly elected BJP MLAs will be held at Bishwa Bangla Convention Center in New Town, where the leader of the legislative party will be formally elected. Amit Shah will be present as the central observer. Since the oath-taking ceremony is being held on the occasion of Rabindra Jayanti, special emphasis is also being given to cultural performances. The BJP is planning to showcase Bengali culture through Rabindra Sangeet and other cultural presentations. Shandipan Dashgupta, Akashbani News, Kolkata.
10: In Tamil Nadu, with the formation of the new government getting delayed, talks have been held to reach the magic number of 118 to prove the majority. The DMK and the AIADMK held the legislative party meetings of the newly elected MLAs yesterday. AIADMK General Secretary Edappadi Palaniswamy has been elected as a leader of the legislative party during the meeting at Puducherry. The crucial meeting of the newly elected MLAs of VCK, CPI and CPIM is to take place today on the issue of lending support to the single largest party, TVK. We have more from a correspondent.
11: The situation in the state has taken interesting political outcome with the AIADMK and the DMK legislative party meeting held yesterday. Both of the parties have commented on their governor's decision on proving the majority. DMK spokesperson TKS Ilangovan has said that it is the duty of the single largest party to prove its majority and added that DMK chief MK Stalin does not want any constitutional crisis. It is to be noted that Puducherry AIADMK secretary A. Anbaragan, who met the media after the legislative party meeting, had said that the power to decide has been given to the general secretary of the party. He hailed the decision of the governor on the issue of majority and said that there will be unexpected decisions in the prevailing political uncertainty. He also informed the media that their leader felt sad about Stalin's loss in this election. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
10: President of Vietnam, Tho Lam, has emphasized that India and Vietnam together have a significant opportunity to play a pivotal role in the global supply chain in today's changing world order. Addressing the India-Vietnam Business Forum in Mumbai, Mr. Lam highlighted that the current global scenario is indeed a challenge but also an opportunity to elevate cooperation between India and Vietnam to a new level. Speaking on the occasion, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis asserted that entrepreneurs, investors and professionals from the technology and manufacturing sectors in countries like India and Vietnam will shape the future of Asia.
4: India and Vietnam offer something important to the world. Trusted partnership, stable governance, economic dynamism and long-term strategic confidence. The future of Asia will be built by entrepreneurs, innovators, investors, technology leaders, manufacturers and young people from countries like India and Vietnam working together.
10: After concluding his visit to India, the Vietnamese president arrived in Sri Lanka last night on a two-day state visit aimed at deepening bilateral ties and boosting trade and investment cooperation. The visit, undertaken at the invitation of the Sri Lankan president Anuradha Kumaradesanayake, coincides with the 55th anniversary of diplomatic relations between the two countries and marks the first visit by a Vietnamese president to Sri Lanka in 15 years. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal chaired a meeting with the chairman of the Indian Chamber of Food and Agriculture, Dr. M.J. Khan. Sharing this information in a social media post, Mr. Goyal said they discussed initiatives to further enhance the quality of life of our farmers, strengthen India's position in the global agriculture landscape, deepen collaboration with the African region, and share India's expertise in the sector. He added that they also deliberated on new pathways to enhance agricultural cooperation for long-term food security. Foreign Secretary Vikram Misri met UAE Minister of State for International Cooperation Rim Al-Hashimi in Abu Dhabi yesterday. In a social media post, External Affairs Ministry said that both sides reviewed the full spectrum of the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership and identified areas for further cooperation. They also discussed the ongoing regional situation and global issues of mutual interest. The government has debunked a digitally altered video of External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal, wherein he is seen stating that India lost 4 Rafale fighter jets during the conflict with Pakistan. In a social media post, the fact-check unit of the Press Information Bureau clarified that the video is an AI-generated deepfake video and has been circulated by Pakistani propaganda accounts to spread misinformation. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Akashwani organized a marathon in the national capital today to mark its 90th anniversary. The nearly 3.5-kilometer marathon began from Akashwani Bhavan and passed through Krishi Bhavan, Rail Bhavan and the RBI building before concluding at Akashwani Bhavan. Employees of Akashwani, Doordarshan and Prasar Bharati, along with the family members, participated in the marathon. Prasar Bharati CEO Gaurav Dwivedi and Director General of Akashwani, Rajiv Kumar Jain, were present on the occasion. Akashwani was established in 1936 and continues to be one of the country's most trusted broadcasting platforms. Police have arrested absconding accused Nida Khan from Chhatrapati Shambhaji Nagar in connection with an alleged forced religious conversion case linked to a TCS company employee in Nashik. A joint operation was carried out last evening by a Nashik police team with the help of the crime branch in Chhatrapati Shambhaji Nagar. A case had earlier been registered against Nida Khan at Deolali Camp police station in Nashik for allegedly trying to force the religious conversion of a girl working in the TCS company. After the case was filed, she had gone absconding. Even after anticipatory bail plea was rejected, police were unable to trace her for nearly a month. IndiGo Airline has announced that it will begin commercial flight services from Noida International Airport in Jewar from the 15th of June. With this, IndiGo is set to become the airport's first launch carrier. IndiGo will gradually connect Noida International Airport with more than 16 cities across the country through direct flights. These include major metro cities like Bengaluru and Hyderabad, along with important destinations such as Amritsar, Chandigarh, Dharamshala, Jaipur, Lucknow, Navi Mumbai, Pantnagar and Srinagar. This will provide passengers with better travel options and faster connectivity. The Uttar Pradesh government has issued orders to operate all smart meters installed across the state in post-paid mode. Energy Minister Arvind Kumar Sharma stated that all smart meters installed under the RDSS scheme have been converted to the post-paid system with immediate effect. Under this arrangement, consumers will receive bills after electricity consumption. The bill for electricity consumed in May 2026 will be issued in June 2026 under the post-paid system. The energy minister said that prioritizing the convenience of electricity consumers, the Uttar Pradesh government has decided to discontinue the smart prepaid meter system. Saudi Arabia suspended U.S. military access to its bases and airspace, forcing President Donald Trump to abruptly abandon his plan to escort ships through the Strait of Hormuz, 2 U.S. officials have confirmed. The move marks a significant setback for Washington's Gulf strategy, with a key regional ally effectively blocking the operation, known as Project Freedom, before it could gain traction. Mr. Trump has shifted focus to diplomacy, describing recent talks with Iran as very good and saying a permanent deal is very possible.
12: Iran is now reviewing a 14-point U.S. proposal to end the war, with Tehran's Foreign Minister Abbas Araghchi calling for dialogue and diplomacy. The proposed framework would pause hostilities and open a 30-day window of final negotiations, even though core issues including Iran's nuclear program would be left for later talks. Washington says it expects an Iranian response imminently. The diplomatic picture remains fluid. Iran has not publicly confirmed acceptance of any terms, and Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Khalibaf has dismissed some media reports as fake. This is Vinod Kumar for Akashwani News from Dubai.
10: While diplomacy advances, fighting across West Asia shows no sign of stopping. Israel bombed Beirut's southern suburbs on Wednesday in the first strike on the Lebanese capital since a U.S. brokered ceasefire nominally took effect on the 17th of April. The Israeli military says its operations target Hezbollah's infrastructure and fighters and has reported more than 220 Hezbollah members killed since the ceasefire began. In Gaza, Israeli strikes have continued, with Hamas condemning the attacks as a continuation of what it calls Israel's war of extermination. Meanwhile, the U.S. military has carried out strikes on Iranian military facilities after responding to attacks on Navy ships. Washington said that it does not want the conflict to grow but is ready to defend its forces. Earlier, U.S. claimed that Iran attacked three U.S. Navy ships in the Strait of Hormuz, but American forces intercepted the attacks and no ships were damaged. In IPL cricket, Lucknow Super Giants defeated Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method in a rain-hit match at the Ikana Stadium in Lucknow last night. Chasing 213 runs for victory, Royal Challengers Bengaluru made 203 for 6 in 19 overs. Earlier put into bat, Lucknow Super Giants scored 209 for 3 in 19 overs. Multiple rain interruptions reduced the match to a 19-over-a-side affair, setting Bengaluru a DLS target of 213. Mitchell Marsh scored a dazzling 111 off 56 for Lucknow, while Rajat Patidar contributed 61 off 31 for Bengaluru. Mitchell Marsh was adjudged player of the match. And now for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra.
13: Thank you, Abhishek. BJP preparing to assume office in Kolkata after its stunning victory in West Bengal finds prominent mention in most of the dailies. Governor dissolves West Bengal Assembly, leads the pioneer. Amit Shah to meet Bengal MLAs today on choice of new chief minister, says the Asian Age. Bengal's re-industrialization roadmaps being chalked out, informs the statesman. India urges Bangladesh to speed up verification of illegal migrants, reports in the Sun Times. In another story, Hindustan Times headlines, Governor keeps Vijay waiting as Tamil Nadu deadlock deepens. The Tribune in its editorial piece says, hung mandate let Tamil Nadu Assembly floor decide. The paper writes that Tamil Nadu's unfolding post-election uncertainty has once again brought the constitutional role of the governor under scrutiny. With Vijay's Tamaraga Vetri Karagam falling short of the halfway mark, the question before Raj Bhavan is politically explosive yet constitutionally settled. Who should be invited to form the government? The constitution does not automatically grant the single largest party the right to govern. The governor is expected to determine which formation is most likely to command the confidence of the assembly. And finally, Financial Express, citing Niti Aayog's National Education Report released yesterday, says that Indian school kids are weakest in mathematics, higher reasoning. And with that, it's back to you, Abhishek.
10: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. BJP Central Observer for West Bengal Amit Shah to meet newly elected party MLAs in Kolkata to elect legislative leader today. Deadlock continues in Tamil Nadu over government formation as MLAs of VCK, CPI and CPIM to meet on lending support. President of Vietnam, Vietnam Supply Chain and Business Forum in Mumbai. Commerce Minister Piyush Goyal whose initiatives to strengthen India's position in global agriculture. Saudi Arabia suspends U.S. military access to its bases in airspace. And in Lucknow Super Giants beat Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method at the Ikana Stadium. And

0: श्रोता दोस्तों, अभी आप भारी बारिश से सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और आकाशवाणी सिलोंग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज। आपको बता दो, आप हमारे साथ बने हुए हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए दोस्तों, अब वक्त हो चला है ज्ञान और मनोरंजन से भरा हुआ कार्यक्रम हेलो ईटानगर का।
1: हेलो ईटानगर।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ज्ञान और मनोरंजन से बड़ा हुआ कार्यक्रम हेलो ईटानगर, और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त गिची कनिक। लेकर आ गया हूँ एक और फ्रेश और एनर्जेटिक सुबह की शुरुआत। यहाँ होगी ढेर सारी बातें और कुछ नगमे। तो दोस्तों, चाय या कॉफी का कप तैयार रखिए, स्माइल के साथ इस खूबसूरत दिन का स्वागत कीजिए, क्योंकि अगले कुछ पल होने वाले हैं बिल्कुल खास सिर्फ यही हेलो ईटानगर कार्यक्रम पर। तो श्रोता दोस्तों, हेलो ईटानगर कार्यक्रम के आरंभ में आइए अब हम आपको बता दें सकारात्मक सोच का टिप, एक छोटी सी बात जो बना सकती है आपके मन को हल्का और दिल को सशक्त।

दोस्तों, जब भी कोई मुश्किल सामने आए तो पहली कोशिश ये करें कि उस पर शिकायत करने से पहले आप खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं इसमें कुछ अच्छा देख सकता हूँ। और दोस्तों, कभी कभी परेशानी हमें कुछ सिखाने आती है और कभी कभी किसी का व्यवहार हमें खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। और कई बार मुश्किल हमें मजबूत बनाने के लिए होती है, ना कि तोड़ने के लिए। तो अगली बार जब जीवन उलझे, मुस्कुराइए और कहिए, ये भी एक अनुभव है, इसमें मैं कुछ सीखूंगा।

तो श्रोताओं, आज के सुझाव में बस इतना ही, और अब आइए रुख करते हैं इन्फॉर्मेशन सेगमेंट की ओर। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन सेगमेंट में आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, लेकिन हम में से बहुत से लोग इसे हल्के में लेते हैं, और वो है अच्छी नींद।

दोस्तों, जब हम सोते हैं तब हमारे शरीर में कई जरूरी काम होते हैं। दिमाग दिन भर की जानकारियों को व्यवस्थित करता है, हमारी मांसपेशियां और हड्डियां खुद को ठीक करती है और हमारी रगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। यानी नींद हमारी शरीर का नेचुरल डॉक्टर है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कम नींद के नुकसान क्या है। दोस्तों, अगर हम रोज कम नींद लें तो हमें महसूस हो सकता है थकावट और कमजोरी, चिड़चिड़ापन और गुस्सा, याददाश्त कमजोर होना, ध्यान लगाने में दिक्कत और धीरे धीरे मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोग जैसी समस्याएं। तो श्रोताओं, बच्चों को 9 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, वयस्कों को 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए और बुजुर्गों को कम से कम 6 से 7 घंटे की गहरी नींद लेनी चाहिए। तो श्रोताओं, अच्छी नींद के लिए अपनाएं ये आसान उपाय। दोस्तों, सोने से एक घंटे पहले मोबाइल, टीवी और स्क्रीन बंद करें। स्क्रीन की नीली रोशनी दिमाग को जगाए रखती है। रात का खाना हल्का और समय पर खाएं। भारी भोजन से नींद में बाधा आती है। दोस्तों, सोने का एक तय समय रखें। शरीर को एक रूटीन की जरूरत होती है। सोने से पहले ध्यान, प्रार्थना या हल्की किताब पढ़ें, इससे मन शांत होता है और नींद जल्दी आती है। और दोस्तों, बेडरूम को साफ और शांत रखें। नींद का माहौल बनाइए, तभी नींद साथ देगी। श्रोता दोस्तों, इन्फॉर्मेशन सेगमेंट में आज बस इतना ही। और अब आइए हर रोज की तरह हेलो ईटानगर कार्यक्रम के अंत में आनंद लेते हैं कुछ बेहतरीन फिल्मी नगमों का। पहला गीत आप सुन पाएंगे फिल्म हम दिल दे चुके सनम से, निम्बोरा।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ दिल से दिल की बात.
1: श्रोता दोस्तों, इसी के साथ ही कार्यक्रम हेलो ईटानगर यहीं पर समाप्त होता है. आपको बता दूं, अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार. इसके बाद हम फिर तुरंत लौटेंगे कार्यक्रम फिल्मी गपशप लेकर. तब तक के लिए बने रहे अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नव निर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथैगल काची वीसीके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर एम जे खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी और निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुस जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू हुई तथा कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन से होती हुई आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने मैराथन में भाग लिया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन भी इस अवसर पर उपस्थित थे। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके पसंदीदा कार्यक्रम फिल्मी गपशप में, जहां होती है फिल्मी दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर एकदम फिल्मी अंदाज में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिचि कनिक, और दोस्तों हम करेंगे बॉलीवुड की दुनिया का फुल ऑन एंटरटेनमेंट बातें। तो चाय की चुस्की लीजिए, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाइए और हो जाइए रेडियो फिल्मी गॉसिप, मूवी अपडेट्स और स्टार्स की इंटरेस्टिंग बातों के लिए।

आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भूत बंगला फिल्म की, जो बॉक्स ऑफिस पर तो हिट रही, लेकिन अब उसके मेकर्स मुश्किलों में नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, फिल्म की सक्सेस के बाद भी कई वेंडर्स और क्रू मेंबर्स ने पेमेंट पेंडिंग होने का एलिगेशन लगाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वेंडर ने कहा कि उनके लगभग 30 लाख रुपए अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। उनका कहना है कि पहले 90 दिन में इनवॉइस क्लियर हो जाता है, लेकिन अब पेमेंट्स मंथ तक अटक रहे हैं। वही एक और क्रू मेंबर्स का कहना है कि उनके 18 लाख रुपए अभी भी पेंडिंग है। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, राइटर प्रांजल कृपलान ने भी प्रोड्यूसर आलोक कुमार चौबे और संजय गुप्ता को लीगल नोटिस भेजा है, क्योंकि एलिजिटली उनके 50,000 रुपए क्लियर नहीं किए गए हैं। तो दोस्तों, बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे कभी कभी ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं जो हेडलाइंस बन जाते हैं। फैंस के लिए फिल्म एक एंटरटेनमेंट होती है, लेकिन उसके पीछे काम करने वाले लोगों की मेहनत और उनका हक भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है।

चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं एक धमाकेदार ओटीटी रिलीज की तरफ। तो दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने एक बार फिर अपने इंटेंस अवतार में नजर आने वाले हैं नेटफ्लिक्स के अपकमिंग क्राइम ड्रामा कर्तव्य के साथ। फिल्म का ट्रेलर रिसेंटली रिलीज हुआ और ट्रेलर देखकर फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है। ट्रेलर में करप्शन, रिवेंज, इमोशंस और परफेक्ट एक्शंस का जबरदस्त मिक्स देखने को मिल रहा है। दोस्तों, फिल्म में सैफ के साथ नजर आएंगे रसिका डुगाल, संजय मिश्रा, जकीर हुसैन और मनीष चौधरी। और सबसे खास बात है, फिल्म को प्रोड्यूस किया है घोरी खान और शाहरुख खान के बैनर ने। दोस्तों, ट्रेलर में सैफ का रग लुक और इंटेंस डायलॉग ऑलरेडी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। फैंस का कहना है कि ये रोल उनके करियर का स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस हो सकता है। तो दोस्तों, क्राइम थ्रिलर्स पसंद करने वालों के लिए ये फिल्म डेफिनेटली मस्ट वॉच लग रही है। और दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन और लेट एक्टर इरफान खान की अनरिलीज फिल्म द लास्ट टेनेंट फाइनली यूट्यूब पर रिलीज कर दी गई है, वो भी इरफान खान के 6th एनिवर्सरी पर। दोस्तों, विद्या बालन ने फिल्म देखने के बाद एक इमोशनल नोट शेयर किया है, जहां उन्होंने कहा कि 25 साल पहले भी इरफान उन्हें सबसे नेचुरल एक्टर लगते थे और आज भी उनकी एक्टिंग उतनी ही मैजिकल लगती है। तो दोस्तों, इरफान खान सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, बल्कि इमोशंस को स्क्रीन पर जीने वाला एक आर्टिस्ट थे। उनकी सिंप्लिसिटी और एक्टिंग स्टाइल आज भी फैंस के दिलों में जिंदा है। अगर आपने इरफान खान की मूवीज देखी है तो आप समझ सकते हैं कि उनकी आंखों में भी एक्टिंग होती थी, चाहे वो इमोशनल सीन हो या कॉमेडी का। दोस्तों, इरफान हर रोल में जान डाल देते थे और विद्या बालन के साथ उनकी केमिस्ट्री को फैंस ने हमेशा अप्रिशिएट किया है।

0: दोस्तों आइए अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस के किंग साइज कलेक्शन की। तो दोस्तों एक्टर रितेश देशमुख की मराठी हिंदी फिल्म राजा शिवाजी थिएटर्स में धमाल मचा रही है। फिल्म ने रिलीज के सिर्फ 7 दिनों में 50 करोड़ का कलेक्शन क्रॉस कर लिया है। ये फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर बेस्ड है। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म को प्रोड्यूस राइट और डायरेक्ट खुद रितेश देशमुख ने किया है। मराठी ऑडियंस से फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोग फिल्म के विजुअल्स, डायलॉग्स और इमोशनल स्टोरी टेलिंग की तारीफ कर रहे हैं। और दोस्तों हिस्टोरिकल फिल्म्स का क्रेज ऑडियंस में हमेशा रहा है और जब स्टोरी इतनी पावरफुल है तो ऑडियंस थिएटर्स तक खुद चली आती है। रितेश का ये ट्रांसफॉर्मेशन फैंस को काफी पसंद आ रहा है और क्रिटिक्स भी फिल्म की अप्रिशिएशन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ खास और चटपटी फिल्मी खबरें। उम्मीद है आपको हमारा ये बॉलीवुड सफर पसंद आ रहा होगा। अगर आप भी किसी एक्टर के फैन हैं, किसी मूवीज का ईगरली वेट कर रहे हैं या फिर किसी ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग को डेडिकेट करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। चलिए दोस्तों अब लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद लौटेंगे और भी नए बॉलीवुड अपडेट्स के साथ, इंटरेस्टिंग स्टोरीज और एंटरटेनमेंट का फुल ऑन तड़का लेकर। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहे फिल्मी गपशप।
1: Dinata dinata dinata

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: Over.
1: Please.

श्रोता दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी गपशप पर। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं साउथ और बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस समांथा रुद्र प्रभु की अपकमिंग फिल्म माँ इंती बंगाराम की। दोस्तों, फैंस इस फिल्म का काफी टाइम से वेट कर रहे थे और फिल्म पहले 15 मई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी है और अब ये फिल्म 19 जून 2024 को थिएटर्स में रिलीज होगी। और दोस्तों, इस पोस्टपोनमेंट का रीजन भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसका रीजन है क्रिकेट। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल फीवर और क्रिकेट क्रेज को देखते हुए मेकर्स ने ये डिसीजन लिया है ताकि फिल्म को बेटर ऑडियंस रिस्पॉन्स मिल सके। दोस्तों, आपको तो पता है इंडिया में क्रिकेट और सिनेमा दोनों ही इमोशंस है और जब दोनों एक साथ आ जाए तो कंपटीशन काफी टफ हो जाता है। मेकर्स का मानना है कि जून रिलीज से फिल्म को ज्यादा फायदा मिल सकता है। और दोस्तों, समांथा के फैंस सोशल मीडिया पर ऑलरेडी एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं और फिल्म के पोस्टर्स और टीजर्स को काफी प्यार मिल रहा है। अब देखना होगा कि जून में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करती है।

दोस्तों अब चलते हैं एक कंट्रोवर्सी की तरफ। तो एक्ट्रेस डांसर नोरा फतेही थर्सडे को नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी NCW के सामने प्रेजेंट हुई। उन्हें एलिजिटली फिल्म सॉन्ग सर की चुनर में वुमेन की इनडिसेंट पोर्ट्रेयल को लेकर समोन किया गया था। मीडिया से बात करते हुए नोरा ने कहा कि उनका किसी की सेंटिमेंट्स हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था और वो पुट इन दैट सिचुएशन थी। नोरा ने इस मैटर पर अपोलॉजी भी इश्यू की। और दोस्तों एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कभी कभी सॉन्ग्स और विजुअल्स को लेकर डिबेट्स होती रहती है और आर्टिस्ट को भी कई बार पब्लिक रिएक्शंस का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों नोरा फतेही अपने डांस परफॉर्मेंस और ग्लैमरस स्टाइल के लिए काफी पॉपुलर है और उनके सॉन्ग्स सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहते हैं। फैंस अब देखना चाहेंगे कि इस कंट्रोवर्सी के बाद उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होता है।

और दोस्तों सुपरस्टार आमिर खान रिसेंटली फिल्म दादी की शादी की स्पेशल स्क्रीनिंग में नजर आए हैं। फिल्म में लीड रोल्स में है कपिल शर्मा और नीतू कपूर। स्क्रीनिंग के बाद आमिर खान कास्ट और क्रू के साथ काफी मस्ती भरे मूड में दिखे। ऑनलाइन वायरल वीडियोस में आमिर सिंगिंग और म्यूजिक एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। फैंस को उनका ये फन लविंग अंदाज काफी पसंद आ रहा है। आमिर खान वैसे भी बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट माने जाते हैं और जब भी वो किसी इवेंट या स्क्रीनिंग में अपीयर होते हैं फैंस की एक्साइटमेंट डबल हो जाती है। तो दोस्तों दादी की शादी को लेकर भी ऑडियंस में क्यूरियोसिटी बनी हुई है और कपिल शर्मा के फैंस स्पेशली फिल्म का वेट कर रहे हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं दुनिया के सबसे ग्लैमरस फिल्म फेस्टिवल्स में से एक, वो है कैंस फिल्म फेस्टिवल। दोस्तों रेड कार्पेट रेडी हो चुका है और बॉलीवुड ब्यूटीज भी अपने फैशन मैजिक दिखाने के लिए तैयार है। इस साल कैंस में नजर आएंगी गॉर्जियस ऐश्वर्या राय बच्चन, स्टाइलिश देवा आलिया भट्ट और एलिगेंट क्वीन अदिति राव। फैंस ऑलरेडी एक्साइटेड है देखने के लिए कि कौन किस डिजाइन आउटफिट में रेड कार्पेट पर ग्लैमर का तड़का लगाता है। दोस्तों आपको बता दो बॉलीवुड और फैशन का कनेक्शन हमेशा से ही स्पेशल रहा है और कैंस जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडिया स्टार्स को शाइन करते देखना फैंस के लिए प्राउड मोमेंट होता है। तो दोस्तों इसी के साथ ही फिल्मी गपशप यहीं पर समाप्त होता है। आज के बॉलीवुड अपडेट बस यहीं तक और इसी के साथ अब आपको हम सुनवाएंगे कुछ बेहतरीन नगमों को।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ दिल से दिल की बात.
1: तो श्रोता दोस्तों, इसी के साथ ही कार्यक्रम फिल्मी गपशप यहीं पर समाप्त होता है. आप हमारे साथ बने हुए हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात. आपको बता दूं, अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार. उसके तुरंत बाद हम लौटेंगे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड लेकर.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं. वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे. बैठक के दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन होगा. एक रिपोर्ट.
3: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी. पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं. इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा. अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे. आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दास गुप्ता, कोलकाता.
2: वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी. प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे. उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी. उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है. सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है. डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की. ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया. राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक आज होनी है. वहीं केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर अपने निर्णय की घोषणा करेगी. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है. उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष एमजे खान के साथ बैठक की. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी बातचीत की गई. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है. 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे. वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है. वे मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया. इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे. सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है. इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है. सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है. आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू हुई तथा कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन से होती हुई आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रॉयल सीमा में आज गरज के साथ बारिश तथा तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: The news read by Subhadra Ramachandran. Union Home Minister Amit Shah will arrive in Kolkata today. He is scheduled to attend a meeting with the newly elected BJP MLAs, during which the party's legislative leader will be selected. The first BJP government in West Bengal will take oath tomorrow, the 25th of Boishak, at the Brigade Parade Ground. According to BJP sources, Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Nitin Gadkari, JP Nadda, BJP President Nitin Naveen and several other central leaders may attend the ceremony. Chief Ministers and Deputy Chief Ministers of various BJP and NDA ruled states are also being invited. In Tamil Nadu, with the formation of the new government getting delayed, political situation in the state, talks are being held to reach the magic number of 118 to prove majority. The DMK and the AIADMK had held the legislative party meetings of the newly elected MLAs yesterday.

दिल से निकली बातें और आपके पसंद के सुपरहिट गाने, यही है आपका अपना रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम। दोस्तों, क्योंकि जिंदगी तब और खूबसूरत लगती है जब हर पल के साथ म्यूजिक हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त गिचि कनिक और लेकर आ गया हूं एक और म्यूजिकल सफर, जहां बजेंगे आपकी फरमाइश के गाने और साथ ही होंगे दिल को छू लेने वाली बातें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सफर की पहली खूबसूरत फरमाइश के साथ, और ये रिक्वेस्ट भेजी है टेंसन क्रो, रोजमेरी टेरोनपी और सरलोए क्रो ने लंगसम करबी अंगलोंग डिस्ट्रिक्ट से। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े रहने के लिए। चलिए दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपकी पसंद का पहला गाना सुनने का, सिर्फ यही रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम पर।

दोस्तों, म्यूजिक का असली मजा तब आता है जब हर गाना किसी की यादों और फीलिंग से जुड़ा हो। और इसी म्यूजिकल चेन को आगे बढ़ाते हुए आ गई है एक और प्यारी सी फरमाइश। और आपको बता दूं, ये रिक्वेस्ट भेजी है हर्षित गोस्वामी ने बोकाखात आसाम से। और दोस्तों, वो सुनना चाहते हैं मस्त और केयरफ्री वाइब से भरा गाना बेफिक्रा। आपको बता दूं दोस्तों, कभी कभी जिंदगी को थोड़ा बेफिक्र होकर जीना भी जरूरी होता है, क्योंकि खुशियां प्लानिंग से नहीं, मोमेंट से मिलती है। तो चलिए दोस्तों, सारी टेंशन को साइड में रखिए और एंजॉय कीजिए ये एनर्जेटिक ट्रैक बेफिक्रा।

चलिए दोस्तों, रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम पर बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट। आपको बता दूं, अब एक खूबसूरत सा फरमाइश आई है गुम्मे माई बागरा जी की तरफ से और वो सुनना चाहते हैं फिल्म राम तेरी गंगा मेली का दिल छू लेने वाला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। और दोस्तों, लता जी की आवाज में एक ऐसी मिठास है जो हर गाने को एक नई जिंदगी दे देती है। तो चलिए दोस्तों, सुरों की इस मैजिकल दुनिया में खो जाइए और एंजॉय कीजिए ये एवरग्रीन मेलेडी सिर्फ और सिर्फ गुम्मे माई बागरा की फरमाइश में।

चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सॉन्ग रिक्वेस्ट की ओर। और आपको बता दूं, अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजा है रोमेश पत्रो, रुन्नू पत्रो और लखी ने घोलाघाट आसाम से, और वो सुनना चाहते हैं फिल्म याराना का किशोर कुमार की आवाज में एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपना पसंदीदा गाना सुनना चाहते हैं तो देर किस बात की, जल्दी से हमें मैसेज कीजिए 9436887808 पर।

0: और सुनिए अपने पसंद का गाना सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 10:10 से सुबह के 11 बजे तक।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
0: चलिए दोस्तों, अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजा गया है नाहरलगन से रोखीनाथ रोंगांग ने, और वो सुनना चाहते हैं मुन्ना भाई MBBS का एक गीत।

दोस्तों, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो दिल की फीलिंग्स को बिना कुछ कहे बयां कर देते हैं, और जब आवाज हो अरिजीत सिंह की तो हर लफ्ज और भी खास बन जाता है। अब एक और प्यारी सी फरमाइश आई है, लेकिन इस बार सेंडर ने अपना नाम नहीं भेजा, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आपकी पसंद ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये रिक्वेस्ट है फिल्म बर्फी के एक सोलफुल गाने फिर ले आया दिल की, जिसे अपनी दिलकश आवाज दी है अरिजीत सिंह ने। तो चलिए दोस्तों, इस ब्यूटीफुल मेलोडी के साथ खो जाइए यादों और इमोशंस की दुनिया में।

दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म बर्फी का एक सॉलफुल ट्रैक, और उम्मीद है दोस्तों आप हमें सुन रहे थे और इस खूबसूरत मेलोडी को एंजॉय कर रहे थे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर। और आपको बता दूं, अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजा है सोनितपुर आसाम से। जिन्होंने इस सॉन्ग की फरमाइश की है उनके नाम है बिमल बसुमतरी, बाइकॉन मुंडा, अमल बसुमतरी और जोगेंद्र रोंगपी। आइए दोस्तों, उनकी फरमाइश में सुनते हैं इस गीत को।

तो दोस्तों, अभी आप इस गीत को सुन रहे थे हितेंद्र दास की फरमाइश में, और आपको बता दूं, इसी के साथ ही हमारा रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारी पहली प्रसारण सभा भी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आप सबको बेहद पसंद आए होंगे। आपको बता दूं, अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। जाते जाते आपको बताना चाहेंगे कि आगे के कार्यक्रमों की सफर में, यानी हमारी दूसरी प्रसारण सभा में, आपके साथ जुड़ेगी आरजे पूरा तुनिया। तो अब आप मुझे, यानी आपकी रेडियो साथी गिची कनिक और स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक तीतांजंग तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम को दीजिए इजाजत। शुभ दिन, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म से संबंधित धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों पर गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। निदेशालय ने बताया

0: कि पीड़ितों द्वारा की गई आत्महत्या से संबंधित कई एफआईआर कंपनी के खिलाफ दर्ज है। निदेशालय ने कल कर्नाटक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में करीब 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं और कंपनी के 3 संस्थापकों को गिरफ्तार किया गया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबुधाबी में बैठक की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। कल खसरे के संक्रमण से 12 और बच्चों की मौत हो गई। 15 मार्च के बाद से बांग्लादेश में 57 लोगों की मौत खसरे से और 279 लोगों की मौत खसरा जैसे संक्रमण से हुई है। देश में परीक्षण किट की कमी से ये संकट और गहरा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई को 1951 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने मैराथन में हिस्सा लिया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन भी इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री गौरव द्विवेदी ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि आकाशवाणी हमेशा से लोगों के दिल की धड़कन रहा है।
1: आकाशवाणी भारत की धड़कन था, है और रहे।
0: आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंध्री कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news are read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi will visit Somnath Temple in Gujarat on the 11th of May to mark 75 years since the restored temple was inaugurated by India's first president, Rajendra Prasad, in 1951. The Prime Minister today wrote an article in the National Daily Paper and shared this information. In his article, he said it was a privilege for him to attend 2 important events related to Somnath within a few months. Earlier this year, Prime Minister Modi attended the Somnath Swabhiman Parv, which marked 1,000 years since the first attack on the temple. The Prime Minister called Somnath as a symbol of India's civilizational strength and resilience. Defence Research and Development Organisation DRDO and the Indian Air Force have successfully conducted the maiden flight trial of the Tactical Advanced Range Augmentation Tara weapon off the coast of Odisha yesterday. In a statement, the Defence Ministry said that the modular range extension kit Tara is the country's first indigenous glide weapon system that converts unguided warheads into precision-guided weapons. It is aimed at enhancing the lethality and accuracy of low-cost weapon to neutralized ground-based targets. The Enforcement Directorate has registered a case against Gamescraft Technologies Limited and its associated entities over allegations of cheating and fraud related to online real money gaming platforms. The case is based on multiple FIRs filed against the company and its founders in connection with allegations of cheating and fraud. ED said there are multiple FIRs registered against the company related to the suicide committed by the victims. The directorate conducted search operations at 17 locations across Karnataka and the National Capital Region yesterday, linked to the Games Craft Group, its founders and employees. BJP Central Observer for West Bengal and the Union Home Minister Amit Shah will meet newly elected party MLAs in Kolkata to elect legislative leader today. We have more from a correspondent.
3: After its sweeping victory in Bengal, the BJP is seeking to turn the swearing-in ceremony into a political event of national significance. The first BJP government in West Bengal will take oath on Saturday at the Brigade Parade Ground. Preparations for the stage and security arrangements at Brigade began on Wednesday itself. According to BJP sources, Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Nitin Gadkari, JP Nadda, BJP President Nitin Naveen and several other central ministers may attend the ceremony. On Friday, a meeting of the newly elected BJP MLAs will be held at Bishwa Bangla Convention Centre in New Town, where the leader of the legislative party will be formally elected. Amit Shah will be present as the central observer. Shandipan Dashgupta, Akashbani News, Kolkata.
2: In Tamil Nadu, with the formation of the new government getting delayed, political situation in the state talks have been held to reach the magic number, 118 to prove majority. The DMK and the AIADMK had held the legislative party meetings of the newly elected MLAs yesterday. AIADMK General Secretary Edappadi Palaniswamy has been elected as the lead of the legislative party meeting at Puducherry. Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh today said that India's approach to migration is guided by the core operational principles of protection of migrants, comprehensive governance across the migration life cycle, and strong international cooperation. The minister was addressing the heads of delegations to the second International Migration Review Forum at the Permanent Mission of India to the United Nations in New York. The minister also held a meeting with Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres, on the sidelines of the International Migration Review Forum. U.S. President Donald Trump warned that the U.S. will knock Iran a lot harder and more violently after U.S. forces intercepted Iranian attacks on three American destroyers as they exited the Strait of Hormuz. In a social media post, Mr. Trump said, three American destroyers passed safely through the Strait of Hormuz under Iranian attack. He claimed missiles and drones were fired at the ships but were destroyed by U.S. defenses, causing heavy damage to Iranian forces. In IPL cricket, Delhi Capitals will take on Kolkata Knight Riders at the Arun Jaitley Stadium in Delhi today. The match will begin at 7:30 p.m. Yesterday, Lucknow Super Giants defeated Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method in a rain-hit match at the Ikana Stadium in Lucknow. And that is the end of this news bulletin.
4: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज से जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार श्रोताओं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की दूसरी प्रसारण सभा में। इससे पहले पहली प्रसारण सभा में आप बने हुए थे आरजे कनिक के साथ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आरजे कनिक के साथ आपका सफर बहुत ही मनोरंजक और सुहाना रहा होगा। अब ऐसे ही बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हैं और शुरू करते हैं आज की दूसरी प्रसारण सभा। और इस सफर में आपके साथ रहूंगी मैं, आपके रेडियो साथी आरजे दुनिया। दोस्तों, इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा एचपीते में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक पीडोले तथा तकनीकी अभियंता तिम तिम। रोजाना की तरह आज हम इस सभा में आपके लिए लेकर आए हैं देरो ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ देश और दुनिया की ताजा

तो सब वो कहते हैं ना, कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो लफ्जों में बयां नहीं किए जा सकते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं। और गाने गाने वही एहसास हम तक पहुंचाने का सबसे खूबसूरत जरिया होता है। कभी हमारी कहानी बन जाती है, कभी हमारे जज्बात, और कभी बस एक ऐसा साथी जो बिना कुछ कहे सब कह जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है कुछ ऐसे ही दिल को चू लेने वाले गानों का जो आपके हर एहसास को आवाज देंगे। और कार्यक्रम का सबसे पहला गीत आप सुन पाएंगे मुझसे शादी करोगे फिल्म से सुनिधि चौहान और सोनू निगम की आवाज में, जीने के है चार दिन।

दोस्तों, बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म लहर। तो चलिए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, मर्डर 2 फिल्म से दिल संभल जरा, मोहम्मद इरफान, अरिजीत सिंह और सलीम भट्ट की आवाजों में।

0: that brings us to the end of our 8-day Ozzy Osbourne tribute on Western Melody. Thank you for joining me, Coco, on this musical journey through the life, madness, and magic of the Prince of Darkness.
1: दोस्तों आप सुन रहे थे पाश्चात्य संगीत पर आधारित वेस्टर्न मेलोडीज कार्यक्रम यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज से जहां होती है दिल से दिल की बात और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 वैशाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
2: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन TARA हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने TARA हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग को बधाई दी है। उन्होंने से भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण विकास बताया। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात 2 दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्य प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तोलाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार, निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। उन्होंने बताया कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को लेकर भी बातचीत हुई। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार 15 मार्च के बाद से देश में 57 लोगों की मौत खसरे से और 279 लोगों की मौत खसरा जैसे संक्रमण से हुई है। महानिदेशालय ने बताया कि परीक्षण किट की कमी से संकट और गहरा गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 77,418 पर, जबकि निफ्टी 121 अंक की गिरावट के साथ 24,205 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi will visit Somnath Temple in Gujarat on the 11th of May to mark 75 years since the restored temple was inaugurated by India's first President Rajendra Prasad in 1951. The Prime Minister today wrote an article in a national daily paper and shared this information. In his article, he said it was a privilege for him to attend two important events related to Somnath within a few months. Earlier this year, Prime Minister Modi attended the Somnath Swabhiman Parv, which marked 1,000 years since the first attack on the temple. The Prime Minister called Somnath a symbol of India's civilizational strength and resilience. He said the temple's journey represents a movement from destruction to creation and shows how faith and culture can survive even after repeated attacks and hardships. The Prime Minister remembered the role of the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel, in rebuilding the temple after independence. Mr. Modi said Patel had strongly believed that the reconstruction of Somnath was a national duty. The West Bengal BJP Legislature Party will meet in Kolkata this afternoon to elect its leader. The party's central observer and Union Home Minister Amit Shah will be present in the meeting. The BJP registered a historic victory in the just-held assembly elections, ending the TMC's 15-year rule in the state. The swearing-in ceremony of West Bengal's first BJP government will be held at Brigade Parade Ground in Kolkata tomorrow. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, BJP President Nitin Naveen and Chief Ministers of all NDA ruled states are expected to attend the swearing-in ceremony. Defence Research and Development Organisation DRDO and the Indian Air Force have successfully conducted the maiden flight trial of the Tactical Advanced Range Augmentation Tara weapon off the coast of Odisha yesterday. In a statement, the Defence Ministry said the modular range extension kit Tara is the country's first indigenous glide weapon system that converts unguided warheads into precision guided weapons. Defence Minister Rajnath Singh has congratulated DRDO, IAF, DCPP and the industry for the maiden flight trial. The Enforcement Directorate has registered a case against Games Craft Technologies Limited and its associated entities over allegations of cheating and fraud related to online real money gaming platforms. The case is based on multiple FIRs filed against the company and its founders in connection with allegations of cheating and fraud. ED said there are multiple FIRs registered against the company related to suicide committed by the victims. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has emphasized on India's burgeoning role as a pillar of global economic stability and highlighted the nation's significant contribution to international prosperity. The minister made these remarks during an address to representatives from various sections of Surinamese society in Suriname.
5: India contributes to the 17% of the total global growth. We help to de-risk the international economy. We help to give more possibilities. We are creating more options. We are today negotiating and concluding more free trade agreements for countries to avail of it. And along with that, we are trying to create a global footprint so that our impact on the international economy and the de-risking of the world is as impactful, as far-reaching as possible.
4: Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh has said that India's approach to migration is guided by the core operational principles of protection of migrants, comprehensive governance across the migration life cycle, and strong international cooperation. The minister was addressing the heads of delegations to the second International Migration Review Forum at the Permanent Mission of India to the United Nations, New York. Mr. Singh highlighted that India has concluded comprehensive bilateral mobility agreements and MOUs with 23 countries and is pursuing several more to create sustainable pathways for fair and ethical mobility. The minister underlined that migration is ultimately about people, their aspirations, resilience and contributions. He added that India's endeavour is to build an inclusive, humane and future-ready framework. In IPL cricket, Delhi Capitals will face Kolkata Knight Riders at Arun Jaitley Stadium in Delhi today. The match will begin at 7:30 p.m. And with that, we end this news bulletin.

श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज से, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम गजल। जी हाँ दोस्तों, गजल एक ऐसी खूबसूरत कला है जहां अल्फाज सिर्फ सुने नहीं महसूस किए जाते हैं। हर शेर में छुपा होते हैं जज्बात, मोहब्बत की बातें, यादों की खूबसूरत और कभी कभी तन्हाई का दर्द भी। गजल की सबसे खास बात यह है कि ये उन बातों को भी बयां कर देती है जो अक्सर हम लफ्जों में नहीं कह पाते। नर्म सुर, गहरी शायरी और दिल को सुकून देने वाली आवाज के साथ गजल हर दौर में लोगों के दिल के करीब रही है। और जब एक खूबसूरत गजल महफिल सजती है तो लगता है जैसे वक्त भी थोड़ी देर के लिए थम सा गया हो। और आज की गजल महफिल में सबसे पहला पेशकश है गुलाम अलीब साहब की आवाज में कभी किताबों में भूल रखना।

0: नगमों के नरम छाव, अल्फाजों की मिठास और एहसासों की गहराई लिए आप बने हुए हमारे साथ गजलों की खास महफिल में, जहां हर गजल दिल की किसी अनकही बात को आवाज देते हैं। और ऐसे एक और खूबसूरत गजल आप सुन पाएंगे फरीदा खानम की आवाज में, आज जाने की जिद ना करो।
1: आज जाने

दोस्तों, गजलों की महफिल से आज बस इतना ही। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फौजी भाई बहनों का दैनिक कार्यक्रम गीतमाला में। हमारे देश की शान, देश का अभिमान, हमारी भारतीय सेना जो हर पल अपने फर्ज पर कायम है, उनकी वीरता, समर्पण और देशभक्ति को हम शब्दों में नहीं सिर्फ सैल्यूट करके ही व्यक्त कर सकते हैं। और ये खास कार्यक्रम सिर्फ संगीतों का कार्यक्रम नहीं, बल्कि हमारी ओर से छोटी सी कोशिश है आप सभी फौजी भाई बहनों का शुक्रिया कहने का। ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। तो चलिए, गीतमाला कार्यक्रम का सबसे पहला गीत सुनते हैं रंग दे बसंती फिल्म से ए आर रहमान, लता मंगेशकर की आवाज में, लुका छुपी बहुत हुई।

श्रोता दोस्तों के साथ ही फौज भाई बहनों का दैनिक कार्यक्रम गीत माला ही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। श्री शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारा हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ यह सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबुधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। श्री मिश्री ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबुधाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि तीनों देशों ने परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात 2 दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम

श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। महानिदेशालय ने बताया है कि परीक्षण किट की कमी से संकट और गहरा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

दोस्तों वक्त है एक और खूबसूरत कार्यक्रम का, हिंदी क्लासिक म्यूजिक, जहां हम आपको सुनाते हैं 60s, 70s और 80s के दशक के कुछ खूबसूरत गीतों को। तो चलिए थोड़ा सा वक्त पीछे ले चलते हैं, जहां शुरू में शोर नहीं सिर्फ एहसास था। ये गीत आपकी यादों के नाम, सुकून के नाम और उस खूबसूरत वक्त के नाम जो कभी पुराना नहीं होता। तो हिंदी क्लासिक म्यूजिक कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन पाएंगे रोती फिल्म से, गोरे रंग पे इतना गुमान कर, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में।

0: जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक में, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अगर 70s 80s के रोमांस की बात हो और नाम ना आए चॉकलेट बॉय ऋषि कपूर का, तो कहानी अधूरी रह जाती है। कपूर खानदान के इस लाडले ने बचपन में ही स्क्रीन पर एंट्री ली थी। फिल्म मेरा नाम जोकर में यंग रोल निभाया और उसके लिए नेशनल अवार्ड भी जीता। लेकिन असली धमाका हुआ 1973 में, जब रिलीज हुई बॉबी ऑपोजिट डिम्पल कपाडिया। हम तुम एक कमरे में बंद हो बस फिर क्या था, ऋषि कपूर बन गए नए जनरेशन की हार्टथ्रोब। स्वेटर्स, चार्मिंग स्माइल और रोमांटिक अंदाज, उनकी स्टाइल ही अलग थी। 80s में उन्होंने एक से भरकर एक रोमांटिक हिट्स थी, जैसे कर्ज, जिसका म्यूजिक आज भी कल्ट माना जाता है, चांदनी, प्रेम रोग और नगीना। उनकी ऑन स्क्रीन पेयरिंग स्पेशली रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए आइकॉनिक मानी जाती थी। वो हीरो जो प्यार को इनोसेंट और चार्म के साथ दिखाया करता था। रोमांस का असली रंग, स्वेटर्स का असली स्वेग और कपूर लेगेसी का शाइनिंग स्टार, वो थे ऋषि कपूर। बात हो रही है ऋषि कपूर की, तो सुनते हैं उन्हीं की फिल्म बॉबी से हम तुम एक कमरे में बंद हो, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज में।
1: सोची तो रहा हूं
2: क्या
1: बाहर

दोस्तों, बात करते हैं उस सुपरस्टार की जिसे शुरुआत में कई प्रोड्यूसर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, उन्हें गोरखा लुकिंग कहकर साइड कर दिया था। जी हाँ, वही एक्टर बाद में बना हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार, द वन एंड ओनली राजेश खन्ना। लेट 60s का दौर था और 1969 में रिलीज हुई आराधना, डायरेक्टेड बाय शक्ति सामंता ऑपोजिट शर्मिला टैगोर, इस फिल्म ने राजेश खन्ना की किस्मत ही बदल दी। म्यूजिक दिया था लेजेंडरी SD बर्मन ने और प्लेबैक दिया किशोर कुमार ने, और यही कॉम्बिनेशन बना एक हिस्टोरिक मैजिक। रूप तेरा मस्ताना जैसे गाने सिर्फ सॉन्ग्स नहीं, एक जुनून बन गए थे। फैंस का क्रेज इतना था कि लड़कियां उनकी तस्वीरों को चिट्ठी लिखती थी, उनकी गाड़ी को किस करती थी। स्टारडम का मतलब तब समझ आया। उसके बाद हिट्स की जैसे लाइन ही लग गई, जैसे दो रास्ते, कति पतंग, आनंद, हाथी मेरा साथी और लगातार 17 सुपरहिट्स। तब मीडिया ने उन्हें दिया एक नया टाइटल सुपरस्टार। 70s का पहला आधा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ राजेश खन्ना के नाम था, और इसी गोल्डन फेस में आई स्टाइलिश थ्रिलर जॉनी मेरा नाम, जिसने ऑडियंस को थ्रिल का नया फ्लेवर दिया। सो दोस्तों, जिस एक्टर को कभी गोरखा लुकिंग कहकर रिजेक्ट कर दिया था, वही बना हिंदुस्तान का पहला सुपरस्टार। यही होती है डेस्टिनी और यही होती है असली फिल्मी कमबैक। तो चलिए, हिंदी क्लासिक म्यूजिक में सुनते हैं राजेश खन्ना का वन ऑफ द मोस्ट सुपरहिट फिल्म आराधना से कोरा कागज था मन में मेरा, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के साथ ही हिंदी क्लासिक म्यूजिक कार्यक्रम ही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। तो तैयार हो जाइए दोस्तों कुछ धमाकेदार हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के लिए। पहला गीत आप सुन पाएंगे ऊंचा लंबा कद वेलकम फिल्म से आनंद राज आनंद और कल्पना पातोवाड़ी की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और आधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
4: अप्रोच टू माइग्रेशन गवर्नेंस।
5: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
4: माइग्रेशन पाथ।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
6: इंडिया कंट्रीब्यूट्स।
5: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
6: इंक्लूडिंग मोर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स फॉर कंट्रीज टू अवेल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
7: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
8: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
7: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
9: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
10: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
7: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6वें युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड न्यूज एवं दोपहर समाचार। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों वह वक्त है कार्यक्रम हिट ऑफ 90s का, वो शो जहाँ हर गाने आपको ले जाएगा 90s के सुनहरी यादों में। कैसेट का दौर, पुराने यादों की धुन, दिल छू लेने वाले रोमांटिक गाने और झूमने पर मजबूर कर देने वाले सुपरहिट ट्रैक्स, सब कुछ होगा यहाँ सिर्फ आपके लिए। मैं हूँ आपकी रेडियो साथी आरजे दुनिया और अगले 30 मिनट तक हम साथ मिलकर जियेंगे 90s का वही जादू, वही म्यूजिक और वही शानदार एहसास। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब बजेगा 90s का असली तड़का सिर्फ हिट ऑफ 90s पर। और कार्यक्रम का सबसे पहला गीत आप सुन पाएंगे बागी फिल्म से कैसा लगता है, अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिट ऑफ 90s और अगला गाना आप सुन पाएंगे दामिनी फिल्म से गवाह है चांद तारे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। दोस्तों आइकॉनिक फिल्म दामिनी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इंसाफ और हिम्मत की मिसाल मानी जाती है। साल 1993 में रिलीज हुई इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजकुमार संतोषी ने। फिल्म में मीनाक्षी शेहसद्री ने दामिनी का किरदार निभाया जो सच का साथ देने के लिए अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ी हो जाती है। उनके साथ नजर आए ऋषि कपूर सनी देओल और अमरीश पुरी। फिल्म की कहानी एक घरेलू नौकरानी के साथ हुए अत्याचार और उसके लिए न्याय की लड़ाई के इर्द गिर्द घूमती है। सनी देओल का फेमस डायलॉग तारीख पे तारीख आज भी लोगों की जुबान पर है। फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने खूब सराहा और इसे बॉलीवुड की सबसे पावरफुल वुमेन सेंट्रिक फिल्मों में मानी जाती है। तो चलिए सुनते हैं दामिनी फिल्म का गवाह है चांद तारे।

दोस्तों बात करते हैं देशभक्ति से भरपूर फिल्म बॉर्डर की। जैसे बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक वार फिल्म्स में गिना जाता है। साल 1997 में रिलीज हुई इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जेपी दत्ता ने। फिल्म 1971 के इंडिया पाकिस्तान वार के दौरान बैटल ऑफ लोंगेवाला पर आधारित है, जहां मुट्ठी भर भारतीय जवानों ने दुश्मनों का डट कर सामना किया था। फिल्म में सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ और पुनीत इसर जैसे कलाकार नजर आए। फिल्म के इमोशनल सीन्स, पावरफुल डायलॉग्स और पेट्रियोटिक सॉन्ग्स जैसे संदेश से आते हैं ने लोगों के दिल को छू लिया। खासकर सोल्जर्स और उनके परिवार की भावनाओं को जिस तरह दिखाया गया उसे ऑडियंस को बेहद इमोशनल कर दिया। रिलीज के बाद फिल्म सुपरहिट साबित हुई और आज भी देशभक्ति फिल्मों का नाम आते ही बॉर्डर सबसे पहले याद आती है। तो चलिए बॉर्डर फिल्म से सुनते हैं हमें जब से मोहब्बत हो गई है, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में।

दोस्तों, इस खूबसूरत नगमे के साथ ही आज का हिट ऑफ 90s कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद यानी 2:58 पर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से न्यूज हेडलाइंस। उसके तुरंत बाद 3 बजे आप सुन पाएंगे मिसमी कमान श्रोताओं का कार्यक्रम। 3:15 पर आप सुन पाएंगे ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। हम लौटेंगे 3:30 पर कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के साथ। सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: chom na khing nam na re na studio ma chi kan ma wa pha poe ne cha hang ma ne kham tai kham di ho te khai mai so jo ho
1: अभी आप सुन रहे थे ताई खमती श्रोताओं का कार्यक्रम। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

दोस्तों, हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त 2:30 हो चुके हैं। अब वक्त है कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बॉलीवुड अपडेट के साथ और सबसे पहले नजर डालते हैं हाल ही में रिलीज हुई कुछ फिल्मों की। तो राजा और शिवाजी रिलीज हो चुके हैं 1 मई को। फिल्म में रितेश देशमुख ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पावरफुल रोल निभाया है, जबकि संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन और भाग्यश्री भी अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं। हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा बेस्ड यह फिल्म स्वराज और शिवाजी महाराज की वीरता को ग्रैंड सिनेमेटिक स्केल पर दिखाती है। ऑडियंस ने फिल्म के विजुअल्स और इमोशनल सीन्स को काफी पसंद किया है और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने एक हफ्ते में 60 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। अब बात करते हैं रोमांटिक ड्रामा फिल्म एक दिन, जो रिलीज हो चुकी है 1 मई को। फिल्म में जुनैद खान और साई पल्लवी की फ्रेश पेयरिंग देखने को मिल रही है और ये साई पल्लवी का हिंदी डेब्यू भी बताया जा रहा है। इमोशनल लव स्टोरी और ब्यूटीफुल विजुअल्स के साथ फिल्म यंग स्टार्स को काफी कनेक्ट कर रही है। क्रिटिक्स ने लीड पेयर की केमिस्ट्री की तारीफ की है और फिल्म अब तक करीब 5 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर चुकी है।

और साथ ही दोस्तों, अगर आपको हॉलीवुड फिल्म्स पसंद है तो माइकल थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और म्यूजिक लवर्स के बीच काफी क्रेज देखने को मिल रही है। ये बायोलॉजिकल म्यूजिक ड्रामा पॉप लेजेंड माइकल जैक्सन की जिंदगी, स्टारडम और उनके आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस पर बेस्ड है। फिल्म में माइकल के लेजेंडरी डांस मूव्स और सुपरहिट सॉन्ग्स को ग्रैंड सिनेमेटिक स्टाइल में रिक्रिएट किया गया है। ऑडियंस विजुअल्स और म्यूजिक सीक्वेंसेस की काफी तारीफ करी है, हालांकि क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स्ड रिस्पॉन्स भी मिल रही है। वहीं हॉलीवुड के मच अवेटेड फैशन ड्रामा सीक्वल द डेविल वेयर प्रादा सीजन 2 यानी रिलीज हो चुकी है 1 मई को। फिल्म में मेरिल स्ट्रीप, एन हैथवे, एमिली ब्लंट और स्टैनली एक बार फिर ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही है। फैशन इंडस्ट्री के चेंजिंग वर्ल्ड और मीडिया राइवलरी को स्टाइलिश तरीके से दिखाया गया है। फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रही है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 250 मिलियन के आसपास कलेक्शन कर चुकी है।

तो दोस्तों बॉलीवुड अपडेट में आज बस इतना ही। अपना फेवरेट फिल्म पिक कीजिए और थिएटर्स में इन फिल्मों का आनंद जरूर लीजिएगा। तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं धूम 2 फिल्म से क्रेजी किया रे सुनिधि चौहान की आवाज में।

0: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 30,000. Offer till stock lasts.
2: दोस्तों इसी के साथ ही बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का ये कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे वांछो श्रोताओं का समाचार।
3: मेले में ये आचार तरीक होकर बार ये पहुंच सों आजम बाजी पुनी मिनट मुझे फिर से मक्कम वांचो साई का पां कपाई पवन का वापस ही पाले वांग का वांग्सुए। अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के टिप्पणी के अन्य वर्ल्ड रेड क्रॉस डे नी मन मा अरुणाचल प्रदेश स्टेट ब्रांच इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी होथम ही ह्यूमैनिटेरियन मोथोसजु मोको सतले ngô thì kia băng vậy ăn chỉ mong vậy cả hồ lại ngô nó bắn này kia mà à giờ cái thằng phụ mà thêm ăn keeping humanity alive and united for humanity là tham là sống kia hay world red cross day a red cross movement a à chung cái holy ăn a là thì kia compassion solidarity hiya humanity han pak ma ma toi yo chite le mokasa angkya mongte kan sung tam tai le na achana dana to he ala ongte pu le bande Arunachal Pradesh Chief Secretary Manish Kumar Gupta Mani Itanagar ma state to apong ang wangkya Kolkata honui to kya US Consulate General Ms. Kathy Gilles Diaz hiya US consulate officials tham pai apong asole bomoho me haja ma United States US days here Arunachal Pradesh ni ba matata pai asama koile mokosa kole asua mai phang homokosat pho mo vanasele Chief Secretary Gupta aj ba mata social media ka ho ma haja meeting mo van kya ma che haja meeting to so ma US consulate general pai US days here state ni ba ma asama koile mokosa kole mai phang motto sa tho ang horticulture hia agriculture jang mot manjai tourism mineral resources disaster mitigation allied industries knowledge hia technological exchange skill development bo ma youth empowerment ning kya motto sa ju pho mo wan je dawa le wan le Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu em अरुणाचल प्रदेश संख्या तब्बी जोलान नौसम अंग कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2026 एग्जाम परीक्षा को अंक एग्जामिनेशन सेंटर असायलो स्टेट फो तो को ओतम ताइक्या का अंग अतलची आबादबानहु ताइक्या का ngai एंतो ले हया जुमा यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अंगजा के तलाई मा अरुणाचल प्रदेश अंकिया तबी तबी जो लानो नौसम अंग हजा एग्जामिनेशन सेंटर होनेनंग आसायालो मामो स्टेट पो तो फातुन ले ngo ham taya bo ma haja khoma chawan long kho nyem zai hiya lamasai infrastructure phan chi mai jo kya state chang ko la arunachal pradesh lan no sam hiya hom ka ko hom kha pho phai ho ham ho tai zi ma tal la yo singan toi tai apong so ham taya le van le khandu a jabo ma union education minister ang haja zaile haja examination center allocation tam cha le zinge jaw la amai le pha hai bo ma ja zu ma arunachal pradesh ma hokho ngoi le jo cuet center da pasing le pha ton hai le chu ban le अरुणाचल प्रदेश नारलागुन होनोई मक्या तोमोरीबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस ट्रिम्स हिंगम थम ए चोंचोन ले होम हिंगम मा स्टेट मा होवांग थम अंगपा अंगता रेनल आर्टरी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी प्रोसीड्योर कागजिंग लग जो मोथो हा मैजंग मा ले यो मोकसा ले थोवालन ले हजा बामा हजा मोथो हले मोकसा ले थोवालन क्या हनपक मा अंग स्टेट डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर चोना मेने हजा ड्रीम सिंह हम थम अंग ची मोंग मेंगा दन का होले पासीघाट नुनाम मक्या डाइंग इरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिंगनु मा चोन चोन ले जांगपों सात कुछ आबा के फेम ताम चा ले रॉयल बेंगल टाइगर चानु नन कबले बोमा हजा चानु हजा लिंगनु तो अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरमेंट होथम ए टेक्निकल लम मा फोंगले असुना से एन क्या ए था क्या कैमरा ट्रैप सर्वे फोटो मा नन कबले हजा बामा डिजिटल Divisional Forest Officer Kempi Ete Haja Chanu Hale Tamchatle Hayangan Kya Haja Lingnu Powling Ecosystem Chatle Azanle Mai Ang Satngo Kya Hocha Ngayla Aho Pula Vanle Boma Haja Sarve Kemera Ma Chavannu Matapong Loile Chitai Kya Holi Critically Endangered Chinese Pangolin Hiya Endangered Hispit Hare Mai फोटो चु नंग कपले अरुणाचल प्रदेश कल्चरल अफेयर मिनिस्टर दसंगलु पुल ए मीनू से कोथम ए अपुवतों ए मोकसा किया रूरल टूरिज्म मोथो सजु हिमालयन बुद्धिस्ट बेल जंग तो कल्चरल एक्सचेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट हिया रीजनल कोऑपरेशन हो मोकसत आसाक आचन अंग क्या जों माता खटखा क्या होली अंग जो आचंग सतंग क्या लवन क्या बो मा नॉर्थ ईस्ट इंडिया म क्या बुद्धिस्ट सेंटर फो नेपाल भूटान हिया श्रीलंका निंग क्या तमजी देश फो तो क्या बुद्धिस्ट सेंटर फो भाई आलिंगताई अंग सो क्या डेवलपमेंट ऑफ द बुद्धिस्ट सर्किट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया मोथोता आसु अमे क्या मोथो यो चंग तैयार है अचोक असन है पूले जका मनी तावंग हो नोई मा डेवलपमेंट ऑफ द बुद्धिस्ट सर्किट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया मन मा अंगोट असो के ता रीजनल वर्कशॉप टू सो मा वन क्या जंग वन का जेमा ngai ban ne bomachi chi e state government working woman minusha ko tham to skill development micro financing here infrastructure development holam makang e so opong la ko oton ang khala jau among tai pu lichu van da एसियांग डिस्ट्रिक्ट पुलिस थम ए चोन चोन ले होम ऑपरेशन डाउन 2.0 मखंग ए मेबो पुलिस स्टेशन चावन जिंग कम म सोंके ता ऑपरेशन म मिहोक आजम ड्रग हिंग हाय हंग सन मि कपलो ले कहोमा अजंग बा पुलिस थम ए हजा कप क्या खनक थम म बंग क्या ड्रग हिंग हाय पो लीगल वालम तो ल पंगनु अकत अशप ला ले बो महया मिहोक अजम खनक ले मेबो पुलिस स्टेशन चकमा लीगल प्रोसीडिंग्स हन पंगमा अंग कोदो कहो इवाई इजा आकाशवाणी ईटानगर गांव फेम साय पहाई पोंवांग इजा साय आलाई पोंला हम दिंग मा पों कपई
2: अभी आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का समाचार। दोस्तों अगर आप वांचो श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर का मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर, या फिर आप न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप के द्वारा भी हमारे कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

तो सब आप सुन पाएंगे हमारा अगला कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। दोस्तों, प्यार जब दिल से दिल तक पहुंचता है तो शब्दों की जरूरत कम पड़ जाती है और एहसास खुद ब खुद गीत बन जाते हैं। 90s के रोमांस की उसी खूबसूरत दुनिया से पेश है दो दिल मिल रहे हैं, एक ऐसा नगमा जो आज भी हर धड़कन को चू जाता है। कुमार सानू की शोरगुल आवाज और परदेश का ये एवरग्रीन गीत सुनिए और खो जाइए प्यार के एहसास में।

दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के साथ ही कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का ये अंक ही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे ईद-ए-मिश्मी श्रोताओं का समाचार।

ऐचा आकाशवाणी ईटानगर शुअलापुची हियो मिट्टू बेली नी ऐतानीचे इदुमिस्मी आहोला केजी दागालंबो ऐतानी वर्ल्ड रेड क्रॉस दे इनी एनागा मचिनी अरुणाचल प्रदेश मची आंदुमा गी पुया आरया अरुणाचल प्रदेश के बाद इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मचे इमु में गी पिंगा प्राइगने जगाई बहुचिमा उजिदा लाहेगा इमु के बाजिगा अथुवे दोने इमु के बने के बा जोतुगा बोवे लाते इनु में अतिका उताची इमु के बने मी के बा उगे ने जोगाई बा आवाया उची माउजिदा ने गवर्नर में लाओगा ता आहोगा अरुणाचल प्रदेश चीफ सेक्रेटरी मनीष कुमार गुप्ता में बुनी ईटानगर माने कोलकाता यूएस कॉन्सुलेट माचे कॉन्सुलेट जनरल केथी गिल्स दियास को चौगा गने अरुणाचल प्रदेश दोने अमेरिका के बने काजी अरुंदा थोपुंदु ची पोआ ची जगह ही बदा आओगा आ थोपुमा पाकु पारा टूरिज्म करु ची दे दिल्ली के कोको ची मिनरल आम ही लाओ तो ने इंडस्ट्री खैप लगादा ला होगा अरुणाचल प्रदेश में ची कॉलेज तो ने यूनिवर्सिटी मामा क्यू या मैं आलम्बो मैं आसाम मने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्यूएट एग्जाम जुना लगा बदा आहूं ऐ तो ने अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट दो ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को लगे ने मैं आलम्बर में इंडिया तिका को माने क्यूएट एग्जाम जुगा जिगा पासिगार आलो तेजू दो ने बोम दिला जीरो वजी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मामा क्यूएट सेंटर आज तेरा बा लाजी ना ने एपीसी में अहम बया लापा अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू में आज पुआ यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का आज जुगे ने हागे बदा आहोगा मी स्टेट खेगे तो मैं मी आतिको माने एग्जाम हाँ अगुया में आने बो गे बने तांदो इन पक्षों से ताने चीफ मिनिस्टर में जुगे ने यूनियन मिनिस्टर में आ तो पुची पुआ लाभ सुहागे ने अरुणाचल प्रदेश में जे मैं आने बो मैं अरुणाचल प्रदेश आतिका को माने क्यूट एग्जाम जुगा जिगा अरुणा लाभ बदा आहोगा इस्यांग डिस्ट्रिक्ट मचे डाइंग इरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मा लिबाचा राजा कानी मा

दोस्तों इस खूबसूरत गीत के साथ ही कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स यही समाप्त होते हैं और आपसे थोड़ी ही देर बाद यानी 4:20 पर आप सुन पाएंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार। साथ ही बता दूं दोस्तों इसी के साथ ही हम आज की दूसरी प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद करती हूं इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आपको रोजाना की तरह बेहद पसंद आए होंगे। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीत में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक पीडोले तथा तकनीकी अभियंता तिमतिम। लेकिन दोस्तों आपको कहीं जाना नहीं है क्योंकि इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा में। और दोस्तों तीसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाएंगे आपके अपने आरजे सलोकना। तो अब मुझे यानी आपके रेडियो साथी आरजे दुनिया को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz जहां होती है दिल से दिल की बात।

और दोस्तों अभी आप सुन रहे थे तांगसा श्रोताओं का समाचार। इस कार्यक्रम को आगे पूरा सुनने के लिए आप ट्यून इन करें आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM है जिसे आप सुन रहे हैं FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

सुहानी शाम के सुनहरी रोशनी में भीगा हुआ प्यार भरा नमस्कार। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब आसमान हल्के रंगों में सिमटने लगता है और ठंडी हवाएं दिल को सुकून देने लगती है, तब वक्त होता है खुद के लिए कुछ पल निकालने का। नमस्कार श्रोता दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुलोकना, और अब से लेकर रात्रि के 9:30 तक इस तीसरी प्रसारण सभा में आपके संग बनी रहूंगी, यही आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM पर। आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले दूसरी प्रसारण सभा में आप सुन रहे थे RJ दुनिया को। तो अब संगीत, मुस्कान और कुछ दिल छू लेनी बातों के साथ इस सभा के सभी कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे हैं तमाम FM ट्रांसमीटर के सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता टी टिमटिम। तो चलिए इस खूबसूरत शाम को और भी यादगार बनाते हैं। अब से कुछ ही पलों में प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर।

कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में एक बार फिर से आप सभी लिसनर्स का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस अंक में मैं लेकर आई हूँ एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी और साथ ही पेश करेंगे कुछ सुरीले नगमे।

तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो ऐसी मूर्तियां बनाता था जिन्हें देखकर हर किसी को मूर्तियों के जीवित होने का भ्रम हो जाता था। आसपास के सभी गांव में उसकी प्रसिद्धि थी, लोग उसकी मूर्तिकला के लिए कायल थे। इसीलिए उस मूर्तिकार को अपनी कला पर बड़ा घमंड था। जीवन के सफर में एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे लगने लगा कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है, वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। उसे जब लगा कि जल्द ही उसकी मृत्यु होने वाली है तो वो परेशानी में पड़ गया। यमदूतों को भ्रमित करने के लिए उसने एक योजना बनाई।

उसने हूबहू अपने जैसी 10 मूर्तियां बनाई और खुद उन मूर्तियों के बीच जाकर बैठ गया। यमदूत जब उसे लेने आए तो एक जैसी 11 आकृतियों को देखकर दंग रह गए। वे पहचान ही नहीं पा रहे थे कि उन मूर्तियों में से असली मनुष्य कौन है।

वे सोचने लगे, अब क्या किया जाए? अगर मूर्तिकार के प्राण नहीं ले सके तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा, और सत्य परखने के लिए मूर्तियों को तोड़ा गया तो कला का अपमान हो जाएगा। फिर अचानक एक यमदूत को मानव स्वभाव के सबसे बड़े दुर्गुण यानी अहंकार को परखने का विचार आया। उसने मूर्तियों को देखते हुए कहा, कितनी सुंदर मूर्तियां बनी है, लेकिन मूर्तियों में एक त्रुटि है। काश मूर्ति बनाने वाला मेरे सामने होता तो मैं उसे बताता मूर्ति बनाने में क्या गलती हुई है। अपनी दुर्गुणता के बारे में सुनकर मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, मैंने अपना पूरा जीवन मूर्तियां बनाने में समर्पित कर दिया, भला मेरी मूर्तियों में क्या गलती हो सकती है? और वो बोल उठा, कैसी त्रुटि? झट से यमदूत ने उसे पकड़ लिया और कहा, बस यही गलती कर गए तुम अपने अहंकार में कि बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती। और दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक अहंकार। अहंकार ने हमेशा इंसान को परेशानी और दुख के सिवा कुछ नहीं।

कहते हैं कि गुलाबी आसमान में जब परिंदे लौटते हैं, मन की किताब में नए पन्ने खुलते हैं। तो दोस्तों, कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर के आज के इस अंक में बस इतना ही। हम छोड़े जा रहे हैं आप सभी को इसी गीत के साथ। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार, और फिर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो में। आप सुन पाएंगे नोक्ते श्रोताओं का समाचार। फिर मिलेंगे शाम के 5:05 पर। तब तक के लिए बने रहे आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM पर।

0: पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टाट के टी पारनायक ने विश्व रेडक्रॉस दिवस के विशेष अवसर पर इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी अरुणाचल प्रदेश राज्य शाखा के सदस्यों एवं स्वयंसेवकों सहित मानवता की सेवा में समर्पित सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2026 के परीक्षा केंद्र राज्य के बाहर आवंटित किए जाने के मुद्दे को औपचारिक रूप से केंद्र सरकार के समक्ष उठाया। अरुणाचल प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज ट्रिम्स नाहरलगन ने राज्य में पहली बार रीनल आर्टरी सीरियो एन्यूरिज्म के लिए इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न की। लगभग दो दशकों बाद पहली बार पासीघाट स्थित दायिंग ईयरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक रॉयल बंगाल टाइगर की तस्वीरें कैमरे में कैद की गई। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। DRDO और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी गाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टाट KT पारनायक ने विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी अरुणाचल प्रदेश राज्य शाखा के सदस्यों एवं स्वयंसेवकों सहित मानवता के सेवा में समर्पित सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इस वर्ष की थीम कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव और यूनाइटेड फॉर ह्यूमैनिटी विश्वभर में रेडक्रॉस आंदोलन की करुणा, एकजुटता और निस्वार्थ सेवा की भावना को और सशक्त करेगी। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि विश्व रेडक्रॉस दिवस मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता और स्वैच्छिक सेवा जैसे महान आदर्शों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का अवसर प्रदान करता है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2026 के परीक्षा केंद्र राज्य के बाहर आवंटित किए जाने के मुद्दे को औपचारिक रूप से केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लिखे पत्र में श्री खांडू ने इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की है कि अरुणाचल प्रदेश के बड़ी संख्या में छात्रों को अन्य राज्य में कई बार बहुत दूर स्थित परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं, जिससे अभ्यर्थियों और उनके परिवारों को भारी असुविधा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अरुणाचल प्रदेश के विशेष भौगोलिक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, सीमित संपर्क व्यवस्था और अविकसित परिवहन अवसंरचना के कारण राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए लंबी दूरी की यात्रा बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाती है। इस बीच मुख्यमंत्री ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से परीक्षा केंद्रों के आवंटन पर पुनर्विचार करने तथा अरुणाचल प्रदेश के भीतर पर्याप्त CUET केंद्र स्थापित करने या कम से कम नजदीकी और सुलभ स्थानों पर केंद्र उपलब्ध कराने का आग्रह किया। अरुणाचल प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज ट्रिम्स नाहरलगन ने राज्य में पहली बार रीनल आर्टरी स्यूडो एज्यूरिज्म के लिए इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न की है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने ट्रिम्स को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह उपलब्धि अरुणाचल के स्वास्थ्य क्षेत्र में तेज प्रगति और राज्य के लोगों तक उन्नत, न्यूनतम आक्रामक तथा जीवन रक्षक उपचार सुविधाएं पहुंचाने के लिए डॉक्टरों एवं चिकित्सा टीमों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविन्द्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार 12 मई को शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे।

0: उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 में बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही है। यूडीए की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। लगभग दो दशकों बाद पहली बार अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित दायिंग ईरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक रॉयल बंगाल टाइगर की तस्वीर एक कैमरे में कैद की गई है। ये बाघ अभयारण्य में हाल ही में किए गए कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण के दौरान रिकॉर्ड किया गया, जिसे अशोका ट्रस्ट ऑफ रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरमेंट के तकनीकी सहयोग से संचालित किया गया था। इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर केएमपी अहतर ने कहा है कि बाघ की वापसी पारिस्थितिकी तंत्र की मजबूती और संरक्षण प्रयासों के सतत प्रभाव को दर्शाती है। अधिकारियों के अनुसार सर्वेक्षण में गंभीर रूप से संकटग्रस्त चाइनीज पेंगोलिन तथा दुर्लभ और लुप्तप्राय हिस्पट हेयर की भी उपस्थिति दर्ज की गई है, जिससे अभयारण्य के नदी तटीय घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी महत्व की पुष्टि होती है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज सर्वाधक तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है, जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी है। श्री मोदी ने कहा है कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर जुड़े दो महत्व आयोजनों में शामिल होने और उनके लिए सौभाग्य की बात होगी। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मानित करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्र राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। यह मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी भी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन में को रवाना किया।
3: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
4: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
3: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: This is Akashwani, the news read by Hagiani. Discussions on forming the new government in Keralam are progressing. Congress, the leading party of the UDF, is expected

आप सभी का कार्यक्रम आप सभी का आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे थे नौकते श्रोताओं का समाचार। इस कार्यक्रम को आगे पूरा सुनने के लिए अभी ट्यून इन कीजिए आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा, लेकर आते हैं हर शाम इवनिंग ड्राइव।

और दोस्तों कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव की शुरुआत हो चुकी है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। और कार्यक्रम की शुरुआत में अभी आप सुन रहे थे सचेत और परंपरा की आवाज में हम सफर फिल्म सैयारा से। वैसे क्या आप जानते हैं कि ये है रियल लाइफ पावर कपल? जी हाँ, जब ये दोनों साथ में गाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सुर और ताल का परफेक्ट मेल हो गया हो। सोशल मीडिया पर इनके वीडियोस तो आप देखते ही होंगे, लेकिन उनकी असली जादूगरी उनके इन गानों में छुपी है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और बढ़ चलते हैं अगले गीत की ओर, जो आपको थिरकने में मजबूर कर दे शायद।

0: बिल्कुल थी धमाकेदार गीत, और इस गीत को गाया है मधुबंती बागची ने। और उम्मीद है कि आप जानते होंगे कि फिल्म आजाद से ही डेब्यू हुआ है राशा थदानी और अमन देवगन की। तो दोस्तों अब कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: I love my Eco because it's got more power.
2: And it also comes with all new safety features.
3: We love our Eco because we can bring all our friends.
1: We love our Eco
2: because it's made every journey special. Over 15 years, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The Eco family.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इन मस्ती भरे गीतों के साथ कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव आपके लिए बहुत ही खुशनुमा रहा होगा। ऐसे ही और मजेदार कार्यक्रम के साथ हम फिर लौट रहे हैं अब से कुछ ही क्षणों में। तब तक के लिए बने रहे आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर।

हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। और एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम के साथ हम फिर हाजिर हैं। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सुलोकना, और आप सुन रहे हैं अब से कुछ ही क्षणों में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम शाम की महफिल। कहते हैं कि शाम जितनी भी ढलती है, यादें उतनी ही गहरी होती जाती हैं। तो देर किस बात की, चलिए बढ़ चलते हैं सॉफ्ट सूदिंग सोलफुल गीतों की ओर, कार्यक्रम शाम की महफिल में।

झोंका हवा का आज भी नींदे उड़ा का होगा ना। तो दोस्तों, इसी गीत के साथ ही हमने शुरू कर लिया है कार्यक्रम शाम की महफिल, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। किसी ने क्या खूब कहा है, कहा है कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। तो दोस्तों, आज की इस महफिल में हम चुराएंगे कुछ ऐसे ही लम्हे जो आपके दिल को और आपके दिल के तार को छेद देंगे।

0: अरिजीत सिंह। जी हाँ, अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे धुन फिल्म सैयारा से, और ये है कार्यक्रम सोलफुल एंड सूदिंग बॉलीवुड ट्रैक्स का कार्यक्रम शाम की महफिल। तो दोस्तों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: Love my eco, cause it's got more power.
2: And it also comes with all new safety features.
3: We love our eco, cause we can bring all our friends.
4: We love our eco, cause it's made every journey special.
5: Over 15 years, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The eco family is growing. Get attractive offers up to ₹37,500.
6: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
5: Get attractive offers up to ₹30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: कार्यक्रम शाम की महफिल में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और चलिए बढ़ चलते हैं अब अगले गीत की ओर। तो दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं ना कि किसी को चाहने की हद क्या होती है। इस सवाल का जवाब हमारे पास तो नहीं, लेकिन शायद ये अगला खूबसूरत ट्रैक आपको इस सवाल का जवाब दे दे।

और मोहब्बत कितनी करूं, इतनी तो मोहब्बत करता हूं। यही थे इस गीत के बोल, जिसे आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म मेट्रो इन दिनों से। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम पर और सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम की महफिल। कहते हैं कि मोहब्बत में अक्सर जाने अनजाने में नादानियां हो ही जाती है, जिन्हें दुनिया पागलपन कहती है, क्रिंज कहती है। लेकिन दिल वो तो बस अपनी ही धुन में रहता है, और सच ही तो है, आखिर दिल ही तो है।

दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपका ये शाम उम्मीदों से भी हसीन गुजरे। इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम शाम की महफिल का आज का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन आप जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि अब से कुछ ही क्षणों में हम फिर हाजिर हो रहे हैं लेकर कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का। और हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में हम पेश करेंगे नगमे बैक टू बैक कुछ ब्रेक्स के संग। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.8।

0: दोस्तों, बातों का सिलसिला कुछ पल के लिए थम सकता है, पर सुरीले गीतों का नहीं। ऑफ कोर्स विद कुछ ब्रेक्स। आप सुन रहे हैं बैक टू बैक हिंदी फिल्मी गीत आपके अपने कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स में, आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम पर। तो कहीं जाइएगा नहीं, इस ब्रेक के बाद हम आपको लिए चलेंगे 90s के दौर में।
1: Love my eco, cause it's got more power.
2: And it also comes with all new safety features.
3: We love our eco, cause we can bring all our friends.
4: We love our eco, cause it's made every journey special.
5: Over 15 years, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The eco family is growing. Get attractive offers up to rupees 37,500.

उदित नारायण की आवाज में आप सुन रहे हैं दीवाना मैं चला, और इसी गीत के साथ ही हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आदि श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से, लेकिन फिर हम हाजिर होंगे आदि समाचार के बाद। तब तक के लिए बने रहे आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर।

श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आदि श्रोताओं का समाचार। इस कार्यक्रम को आगे पूरा सुनने के लिए अभी ट्यून इन करें आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर, या फिर आप न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM है, जिसे आप सुन रहे हैं FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, क्योंकि वादा तो टूट जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त सुलोकना और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर फिल्म दिल का क्या कसूर के गीत के साथ ही हमने शुरू कर लिया है कार्यक्रम। आज के कलाकार आप सभी लिसनर्स का तहे दिल से स्वागत करते हैं आज की महफिल उस आवाज के नाम जिन्होंने 8 दशकों तक भारतीय संगीत को अपनी उंगलियों पर नचाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुरों की मल्लिका आशा भोसले जी की। बिल्कुल दोस्तों, कार्यक्रम आज के कलाकार में हमारे कलाकार हैं आशा ताई। आशा ताई का सफर संघर्ष से शुरू हुआ था। सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला गाना गाया, जहां लता दीदी मुख्य अभिनेत्रियों की आवाज बनी। आशा जी ने उन गानों को अपनाया जिन्हें कोई और नहीं छूना चाहता था, चाहे वो कैबरे हो या आइटम नंबर, पर उन्होंने हर धुन को एक अलग पहचान दी। तो चलिए अब कार्यक्रम आज की कलाकार की इस शाम में बढ़ चलते हैं उनके उस अंदाज की ओर जिसने हिंदी सिनेमा में वेस्टर्न फ्यूजन की नींव रखी। ओपी नैयर की धुन और आशा ताई की नशीली आवाज़।

क्या आप जानते हैं कि आशा ताई की असली पावर तब दिखी थी जब उनकी मुलाकात पंचमदा यानी आरडी बर्मन से हुई। इस जोड़ी ने संगीत की हर सरहद को तोड़ा, चाहे वो हाई एनर्जी रॉक हो या सादा रोमांस। क्या आप जानते हैं दम मारो दम रिकॉर्ड करते वक्त उन्हें तेज बुखार था, फिर भी उन्होंने वो जादू बिखेरा कि गाना ग्लोबल एंथम बन गया था। दोस्तों आगे है आशा ताई की मखमली आवाज में वो गाना जिसमें रेखा की खूबसूरती और आशा जी की मखमली आवाज का संगम हुआ था।

12 अप्रैल 2026 की वो तारीख जब मखमली आवाज के मल्लिका आशा ताई हमें छोड़कर चली गई।

Anye yang tadi, anye pot tadi.

0: Mororanga kunam, ate tadala arimu taye bunyam, ate tadani dimam galaringte, hamdu galaringte, ngoyani galaringte, yana galaringte, ate tadani sanyamba.
1: श्रोता दोस्तों, तकनीकी कारणों की वजह से आज हम आपको निशी समाचार नहीं सुना पाए, लेकिन आप अगर इस कार्यक्रम को आगे पूरा सुनना चाहते हैं, आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज़ पर, और आप सुन पाएंगे निशी श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी ईटानगर कारुण FM है, जिसे आप सुन रहे हैं FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे वीकेंड स्पेशल मैगजीन कार्यक्रम।
2: I love my eco because it's got more power.
3: And it also comes with all new safety features.
4: We love our eco because we can bring all our friends.
5: We love our eco because it's made every journey special.
6: Over 15 years, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The eco family is growing. Get attractive offers up to ₹37,500.
7: Akashwani Tanagar presents the Weekend Special Magazine Show. I'm your host, Zulekha Topiwala.

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर कारोन FM 103.1 MHz पर। सुन रहे थे आप वीकेंड स्पेशल मैगजीन प्रोग्राम और उसके तुरंत बाद हमने आगाज कर लिया हिंदी फिल्मी गीतों का। आप सुन रहे थे पिंक लीव्स, खुशबू ग्रेवाल और उनके साथियों की आवाज में फिल्म हेट स्टोरी 2 से। और चलिए आप आगे बढ़ते हैं, आगे है वफा ने बेवफाई हिमेश रेशमिया की आवाज में, और इस फिल्म का नाम है तेरा सुरूर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

सुन रहे थे आप इश्क मुबारक फिल्म तुम बिन पार्ट टू से, और इसी गीत के साथ ही हिंदी फिल्म में गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन आप जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी फिल्मी फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: हेलो फरमाइश,
1: हेलो फरमाइश,
2: हेलो नमस्कार सर,
1: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में बहुत बहुत स्वागत है आप।
2: मेरा शुभ नाम है देवजीत दास और मेरा गांव का नाम है बद्रीफार, डिस्ट्रिक्ट एक काचा आसाम से। जिंदगी में एक दोस्ती बनती है, जिंदगी में एक प्यार बनती है, जिंदगी में एक दिल बनती है।
1: क्या बात है, जिंदगी में एक ही प्यार बनता है और वो सही प्यार होना चाहिए, है कि नहीं? जी देवजीत दा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहिए अभी कैसा है आपके वहाँ पे मौसम?
2: बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो गुरुवार में अपने आकाशवाणी ईटानगर में दो बार हेलो फरमाइश रिकॉर्डिंग किया, बहुत अच्छा लग रहा है।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब से दो बार होता है रिकॉर्डिंग जी।
2: पिछले हफ्ता तो मेरे दीदी के साथ बातचीत हुआ,
1: हाँ जी, नोरा जी के साथ आपकी बातचीत हुई थी।
2: हाँ, तो मैं आज गाना सुनना चाहता हूँ।
1: हाँ जी, कहिए कौन सा फिल्म का गाना सुनना चाहेंगे आप?
2: फिल्म का नाम है दिल वाले।
1: दिल वाले, ओके।
2: और गाने का बोल है जीता था जिसके लिए, गाना
1: जीता था जिसके लिए मरता था। जी जी, बहुत ही प्यारा गीत आपने सुना।
2: और ये गाना गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक।
1: जी जी जी जी, और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे देवजीत दास इस गीत को?
2: पहले मेरा परिवार में गाना सुना, जो मेरा पिताजी है जितेंद्र कुमार दास और मेरा माताजी है शिल्पी दास, बड़े भैया है देवजीत दास, और आपके लिए सर गाना भी। और ये गाना कुछ मैं दोस्तों को साथ डेडिकेट करूंगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी।
2: पहले मेरा आसाम सिरभूमि जलाशय है, मेरे बड़े भैया है अनुप कुमार भट्टाचार्य और दीदी है श्वेताबा भट्टाचार्य जी, और दादा है प्रेमोदी चक्रवर्ती, और कचर से है दादा है जहरलाल बर्मन दादा है, और है हैदराबादी से है दादा राजा मलाकार रामतो भाई, और है दादा है करबुल हक मजुमदार, और है मेरा बहन है लवली दास और बहन है बबली दास, और अभी जो आकाशवाणी ईटानगर में सुनते सारे श्रोताओं के लिए गाना
1: सभी को आप डेडिकेट करना चाहिए।
2: बेंगलुरु से है मेरा दादा है मिथुन चक्रवर्ती।
1: तो देवजीत दा, अपने माता पिता को हमारा नमस्कार कहिए और सुनते हैं आपके पसंद का गाना दिलवाले फिल्म से।
2: ये गाना कब बार में सुनूंगा? कल सुनूंगा,
1: कल। हाँ, कल FM में 7:35 को और मीडियम वेव में 8 बजे, तो जरूर सुनिएगा और अगली बार भी जरूर कॉल कीजिएगा।
2: मैं तो दो हफ्ते की बार कॉल करूंगा, मैं श्रोताओं को मौका देना।
1: अच्छा अच्छा, ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने देवजीत दा जी। नए श्रोता जुड़ेंगे हमसे तो हमें भी अच्छा लगेगा, तो आप दो सप्ताह के बाद को जरूर कॉल कीजिएगा।
2: जी जी, नगर में।
1: ओके जी जी जी,
2: तो आपके साथ बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा।
1: जी मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा, तो अगली बार आप जरूर हमसे जुड़िए। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी सर, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी सर, धन्यवाद सर। लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ सर, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से सर।
0: जी, हमारे नियमित प्यारे श्रोता लोकेंद्र जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहिए, कैसे हो आप?
1: धन्यवाद। बस बिल्कुल सर जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और अब ये जो गर्मी का जो दौर आता है ना सर, तो ये बहुत काटने को दौड़ता है
0: जी, ये बात तो सही है।
1: ऐसा लगता है कि ठंडी वादियों में चले जाएं, आपके उधर आ जाएं अरुणाचल प्रदेश में
0: जी,
1: घूमने के लिए,
0: क्या बात है, जरूर आइए।
1: चले जाएं कहीं जम्मू कश्मीर चले जाएं, ऐसा लगता है गर्मी
0: हाँ
1: के
0: जी
1: दिन तो बिल्कुल बहुत अजीब लगते हैं
0: जी, परेशानी तो होती है जी जी जी। तो कभी समय मिले तो जरूर आइए अरुणाचल प्रदेश, हम आपको
1: आएंगे
0: घुमाएंगे
1: सर जी, आएंगे भी
0: जी।
1: बिल्कुल आएंगे। ये तो आपका बहुत ही सुंदर, मतलब मैंने यूट्यूब में मोबाइल में देखा है, मतलब
0: जी जी जी हाँ
1: बहुत
0: जी।
1: ही अच्छा राज्य है, बहुत ही सुंदर और विकसित और हरियाली से भरा हुआ राज्य है।
0: जी जी
1: प्रत्येक
0: जी
1: जगह पहाड़ियों पर पेड़ हैं, पौधे हैं, ठंडी हवाएं हैं
0: बिल्कुल।
1: और बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है वहां पर।
0: हमारे यहाँ
1: जितना
0: ईटानगर में तो थोड़ी गर्मी है, लेकिन ऐसी ऐसी जगह भी है जहाँ पे अभी भी बर्फबारी हो रही है अरुणाचल प्रदेश में
1: जी,
0: जी। तो कभी आइए, हम
1: सही है।
0: साथ चलेंगे घूमने के
1: आएंगे सर, आएंगे,
0: लिए।
1: बिल्कुल आएंगे सर जी।
0: जी जी जी जी हाँ जी, हम बाहें खोले आपका स्वागत करेंगे
1: जी धन्यवाद।
0: तो
1: तो
0: बात
1: सर
0: करते।
1: जी, ये गर्मी का जो दौर चल रहा है, आज आपके यहाँ पर जो फोन लगाने की जो मेरी इच्छा थी, उसमें एक बहुत दिनों से एक गीत को मैंने सोच रखा है कि
0: अच्छा जी।
1: आपके यहाँ जब फोन लगेगा तब मैं इस गीत की चॉइस करूंगा आपसे।
0: जी जी
1: वो फिल्म का नाम है पति पत्नी और वो,
0: हाँ जी।
1: और गीत के बोल हैं, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए,
0: ओहो
1: जाना आए या ना आए।
0: जी, गर्मी के मौसम में तो ठंडे पानी से नहाना ही बेहतर रहेगा।
1: ठंडे पानी से नहाना गर्मी में चाहिए, उससे क्या होता है, जैसे दिन भर के वातावरण में आप कहीं काम पर जाते हैं, गर्मी रहती है, गर्मी
0: जी
1: वातावरण में आप काम करते हैं, शाम के समय में अगर आप ठंडे पानी से नहाएंगे तो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन रहेगा, उससे आपको
0: जी
1: लू नहीं लगेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही फ्रेश
1: जी
0: महसूस
1: सर,
0: करेंगे आप
1: जी सर जी।
0: जी। तो हाँ
1: तो हमारे
0: जी
1: कुछ मित्र भी हैं, उनके लिए यह गीत
0: जी जी
1: डेडिकेट रहेगा।
0: जरूर जरूर हाँ जी।
1: तुकाराम जाधव जी हैं, करणवीर पॉल जी हैं, सोनू जी पंजाब से, हमारे मित्र गौतम राय बोले जी हैं, और राम बाबू मालवी जी भोपाल से, सुनील झा जी हैं भोपाल से, यह भी हमारे मित्र हैं, योगेश जी भी हैं हमारे मित्र, और हमारे एक बहुत ही आपके उधर के मित्र हैं अर्जुन प्रधान जी,
0: जी जी
1: उनसे
0: जी
1: मेरी चर्चा होती रहती है फोन में, बहुत अच्छे मित्र हैं। और यह आकाशवाणी के लिए यह भी गीत रहेगा, ठंडे ठंडे पानी से नहाना
0: नहाना
1: चाहिए।
0: चाहिए। ओके लोकेंद्र जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी धन्यवाद, बहुत
0: जी।
1: बहुत धन्यवाद।
0: ओके नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: सर आपका भी स्वागत कर रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र से श्रीकांत जोशी।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, और सुनाइए कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे सर, और एक महीने के अंतराल में आज कॉल किया सर।
0: जी आप नए श्रोताओं को मौका देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, और पिछले महीने में रिचार्ज भी नहीं था, इसलिए नहीं कॉल किया।
0: अच्छा, रिचार्ज नहीं था। ओके जी जी, कोई बात नहीं। हाँ, जब भी रिचार्ज रहेगा आप जरूर कॉल कीजिएगा।
1: जी सर, प्रोग्राम सुनता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं।
0: अच्छा, कॉल नहीं करते फिर भी आप प्रोग्राम सुनते हैं?
1: हाँ, प्रोग्राम
0: क्या बात है। जी जी जी,
1: रेडियो से जानकारी मिलती है ना, समाचार सुनते, साथ में मनोरंजन भी करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी।
1: हाँ सर, और आपके यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है, पूर्वोत्तर भारत में। महाराष्ट्र में इतनी नहीं है, गर्मी के दिन चल रहे हैं आपको।
0: ओके जी जी जी, गर्मी से थोड़ा अपने को बचा के रखिए।
1: मैं रेडियो सुनना और गाना सुनकर मनोरंजन करना ही हमारा काम है अभी।
0: ओके जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात है, घर के अंदर रहिए ताकि आप लू से बच रहे हैं। जी तो श्रीकांत जी, कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाएं?
1: मुझे मिस्टर नटवरलाल फिल्म का गाना सुनने का है, उसमें खुद अपने जो अभिनेता अमिताभ बच्चन है ना, उनकी आवाज में गाना है वो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा
0: एक किस्सा सुना। ओके जी जी जी,
1: पानी का किस्सा ऐसा है ना, वो गाना सुनने का है।
0: जी जी जी, जरूर सुनाएंगे। और किन श्रोताओं को आप सुनाना चाहेंगे इस गीत को?
1: सर तो पहले आपके लिए सुनाऊंगा, और उसके बाद जो हमारे पप्पूराम घाटे हरियाणा के, उनके बाद मनोज कुमार चित्रसेन जी उड़ीसा से कॉल करते उन लोगों के लिए, और अनुज कुमार भट्टाचार्य, सत्यपा भट्टाचार्य उनके लिए, और जितने भी दोस्तों प्रोग्राम सुनते उन सब के लिए सर।
0: सभी को आप डेडिकेट करना चाहते हैं?
1: जी हाँ
0: जी। श्रीकांत जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
1: धन्यवाद सर।
2: मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो, कई साल पहले की ये बात है।

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ से, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो।

0: लेकिन आप तो जिंदा हैं।
1: अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? हाँ
2: हेलो फरमाइश।
3: जी सर नमस्ते।
2: नमस्ते, हेलो फरमाइश में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी थैंक यू सो मच। मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
2: प्रेम सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहिए कैसे हैं आप?
3: जी मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है। मोबाइल ऐप से कार्यक्रम सुनता हूँ मैं ईटानगर के।
2: ओके जी जी जी जी बहुत ही अच्छा लगा।
3: आप लगते हैं कार्यक्रम फोन इन प्रोग्राम ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं हम लोग।
2: अच्छा जी जी जी जी
3: जी उसकी एक खासियत बताऊँ सर आपको मैं?
2: जी जरूर जरूर। हाँ जी
3: जी सबसे पहले तो इसमें अलग अलग श्रोता अपने पसंद के गाने सुनते हैं, उसके बाद में अपनी बातें बताते हैं जो बड़ी रोचक होती है।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल।
3: और इससे में हमारे दोस्त भी काफी मिलते हैं, एक दूसरे को बारे में जानकारी मिलती है, उनके बारे में बताते हैं और उनके राज्य के बारे में बताते हैं। बड़ा अच्छा कार्यक्रम लगता है।
2: जी जी जी बिल्कुल सही कहा आपने प्रेम सिंह जी। तो अब से आप भी हमसे जुड़ते रहिए और अपने बारे में आप श्रोताओं को बताइए।
3: जी मैं बताऊं सर, मैं खेती किसानी का काम, गेहूं की अभी फसल लगाई थी हमने तो उसको तो हम काट के घर ले आए एक महीने डेढ़ महीने पहले।
2: ओके।
3: अभी कुछ समय के लिए खेत को खाली कर दिया है, जब बरसात होगी तो हमारे यहाँ पे सोयाबीन की फसल लगाई जाएगी।
2: ओके जी जी जी
3: जी। और बताओ सर, काफी अच्छा एरिया है हमारे यहाँ पे, बड़े बड़े खेत है लोगों के, मैदानी इलाका है और मतलब पेड़ पौधे भी है, बगीचे भी है, मतलब बगीचे लगा के काफी लोगों ने। जी हाँ सर।
2: ओके।
3: और मतलब पानी की भी अच्छी उचित व्यवस्था है सिंचाई के लिए और पीने के लिए भी मीठा पानी उपलब्ध है।
2: ओके वाह वाह वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छी जगह पर आप रह रहे हैं। कभी मौका लगे तो हम जरूर आएंगे घूमने के लिए।
3: जी बिल्कुल। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर काफी प्रसिद्ध है, यहाँ पर काफी दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मन की इच्छा पूरी करके जाते हैं।
2: बिल्कुल।
3: महाकालेश्वर की तो अभी जैसे आपको पिछले जब महाशिवरात्रि आई थी ना।
2: ओके जी
3: जी। उस समय पे काफी मतलब धूम थी, वहाँ पे मेला भी लगा था महाशिवरात्रि का। और ऐसा कहा जाता है कि जिनके लग्न में मतलब शादी में थोड़ी समस्या आती है ना, जो महाशिवरात्रि के दिन बाबा भोले के दर्शन कर ले तो उनके मतलब शादी होने के योग जल्दी मिल जाते हैं,
2: ऐसी
3: मान्यता है वहाँ पर।
2: जी जी जी जी, जी बिल्कुल अच्छी जी।
3: और जैसे भी सावन का जो महीना आता है ना तो उसमें तो वहाँ पर मतलब रेगुलर इतने श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से दर्शन करने के लिए, कांवड़ यात्री आते हैं और महाकालेश्वर बाबा का जलाभिषेक करते हैं।
2: ओके जी जी जी जी। ओके प्रेम सिंह जी, अपने बारे में और अपने जगह के बारे में बहुत सारी अच्छी जानकारी दी आपने हमें, तो बातचीत तो जारी रहेगी। चलिए कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाएं?
3: जी सर, फिल्म का नाम है कोयला और गाने के बोले देखा तुझे तो हो गई दीवानी, पालू तुझे तो मर न जाऊं कहीं।
2: और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
3: जी हमारे दोस्त हैं लोकेंद्र वर्मा, भगवान सिंह परमा, केसरी सिंह राजपूत, तुकाराम जाधव।
2: तो प्रेम सिंह जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको आपके पसंद का गाना कोयला फिल्म से सुना रहे हैं।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश ईटानगर।
1: नमस्कार सर, नमस्कार। मैं जवाहरलाल वर्मन काठाड़ जिला से बोल रहा हूँ सर।
0: जी जवाहरलाल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: हाँ सर, थैंक यू सर आपको। और कैसे आप?
0: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हो?
1: मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर।
0: ओके बढ़िया। और मौसम?
1: जी हाँ जी हाँ, आज हेलो फरमाइश में
0: जी
1: महान गीतकार गुलशन बाबरा जी का लिखा हुआ एक गाना सुना दीजिए।
0: ओके जी जरूर सुनाएंगे।
1: महान संगीतकार राहुल देव बर्मन जी का सुर में सजाया हुआ वो गाना, आशा जी और किशोरदा के जुगल स्वर में।
0: क्या बात है जी।
1: खुल्लम खुल्लम प्यार करेंगे हम दोनों, ये गाना सुना दीजिए।
0: जरूर सुनाएंगे। और
1: खेल खेल में फिल्म से ये गाना
0: जी जी हाँ
1: सुना
0: जी,
1: दीजिए सर।
0: खेल खेल में फिल्म का गाना जी जरूर सुनाएंगे।
1: गीतकार गाना लिखते हैं और संगीतकार गाना में सुर डालते हैं,
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: इसके बाद गीत बनते हैं।
0: हाँ जी।
1: वो गीत कौन गायक गायिका गाएगा।

0: दीजिए,
1: जी
0: डेडिकेट तो करना चाहता हूँ मैं
1: जी,
0: पहले आपके,
1: धन्यवाद जी जी,
0: और प्रेमजीत भैया है, और आशुतोष देवनाथ है, और सुनने वाले सब लिसनर्स के लिए सर।
1: सभी को आप सुनाना चाहते हैं जी।
0: जी हाँ जी
1: हाँ, तो जवाहरलाल जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: हाँ सर, थैंक यू सर।
1: ओके, नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार,
1: मैं ओम प्रकाश नेमा विद्यानगर तेंदुखेड़ा जिला दमोह मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर।
0: जी ओम प्रकाश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहिए कैसे हैं आप?
1: धन्यवाद सर।
0: जी
1: बहुत अच्छे हैं, गर्मी का मजा ले रहे हैं सर।
0: अच्छा, गर्मी का मजा ले रहे हैं। जी जी, ये भी बात सही है, ठंडी का जैसे हम मजा लेते हैं उसी तरह से गर्मी का भी
1: आनंद लेना चाहिए।
0: हाँ जी, हर मौसम का आनंद लेना चाहिए। और अभी क्या चल रहा है जिंदगी में?
1: बस दुकान पर बैठे हैं।
0: अच्छा जी,
1: आज सर हम सुनेंगे तोतन की बेटी।
0: ओके जी,
1: इसका गीत है कौन सुनेगा किसको सुनाए।
0: कौन सुनेगा किसको
1: सुनाए,
0: इसीलिए चुप रहते। जी जी जी, बहुत ही बढ़िया गीत आपने चुना है, मगर चुप क्यों रहना है ओम प्रकाश जी? बात तो करनी है।
1: कुछ ऐसा आ जाता है जिसमें चुप रहना बहुत अच्छा रहता है।
0: जी जी जी, कभी कभी चुप्पी भी अच्छी होती है। और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे ओम प्रकाश जी इस गीत को?
1: हमारे लोकेंद्र वर्मा जी है और ब्रजेंद्र विश्वकर्मा जी हैं और तेज सिंह अग्रवाल जी हैं, बहुत से दोस्त हैं सर।
0: अच्छा,
1: दोस्तों के साथ सुनना चाहती हैं।
0: ओके, सभी दोस्तों के साथ आप इस गीत को सुनना चाहते हैं?
1: आप भी हैं सर उसमें?
0: जी जी, मैं तो जरूर सुनूंगा ही आपके साथ। जी, जी तो ओम प्रकाश जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनती हैं आपके पसंद का गाना।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो
0: जी।
1: हेलो जी
0: नमस्कार। हेलो
1: नमस्कार
0: फरमाइश
1: नमस्कार सर,
0: जी। नमस्कार
1: मैं उत्तम कुमार भगत बोल रहा हूँ सर, पाकुड़ झारखंड।
0: जी। उत्तम जी, काफी दिनों के बाद आपने हमें याद किया।
1: जी सर, टाइम भी नहीं मिल पा रहा था और इधर मतलब फोन भी मतलब लगाने में थोड़ा सा बिजी आता है, तो
0: ओके ओके जी जी
1: इसी
0: बात
1: वजह
0: तो
1: से
0: सही
1: भी
0: है
1: थोड़ा सा मतलब मिस हो गया है।
0: ओके। चलिए, बिजी होते हुए भी आपने आज हमें याद किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहिए, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं सर, और
0: ओके
1: आप कैसे हैं आप लोग?
0: जी, हम भी बहुत ही बढ़िया हैं, मजे में हैं
1: जी सर, जी
0: जी।
1: सर।
0: और अपने वहाँ का मौसम का हाल कैसा है?
1: मौसम तो इस बार सर मतलब जैसे मतलब गर्मी बहुत ज्यादा तो नहीं हो रही है,
0: अच्छा जी।
1: वैसे भी गर्मी 2-3 दिन से धूप तो किया हुआ था, फिर बारिश, मतलब अभी मौसम बहुत ठंड है,
0: अच्छा,
1: लगभग 25-28 डिग्री सेल्सियस होगा अभी लगता
0: ओके, बढ़िया बढ़िया। फिर तो यहाँ पे भी वैसा ही मौसम है
1: है।
0: जी,
1: हाँ हाँ
0: ज्यादा गर्मी
1: आपका तो
0: नहीं जा
1: सर
0: रही
1: पहाड़ी एरिया है तो फिर वहाँ तो लगता है कि थोड़ा सा मौसम ठंडा ही रहता
0: जी
1: होगा
0: जी
1: ना।
0: जी ओके। तो
1: जी
0: बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। कहिए, कौन सा फिल्म का गीत आज सुनाए आपको?
1: आज आप सुनवा दीजिए, फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना, इसका टाइटल सॉन्ग है, वही आप सुनवा दीजिएगा।
0: ओके, टाइटल सॉन्ग ही आप सुनना चाहते हैं,
1: जी सर,
0: और
1: जी
0: किन लोगों को डेडिकेट करना चाहेंगे इस गीत को?
1: बस हमारे जितने भी श्रोता लोग हैं सुनते हैं सभी
0: ओके
1: को डेडिकेट रहेगा।
0: ओके, सभी के साथ आप सुनना चाहते हैं
1: जी
0: जी।
1: सर,
0: तो
1: जी
0: उत्तम जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
1: सर, धन्यवाद।
0: ओके, धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश
1: जी सर, जिला विदिशा तहसील लटेरी ग्राम मोहब्बतपुर से रवि केवड़ बात कर रहा हूँ।
0: ग्राम मोहब्बतपुर और मोहब्बत भरी आवाज में कॉल लगाया।
1: जी बिल्कुल सर, जी अब अभी ड्यूटी पे ही हूँ और ड्यूटी से ही कॉल कर रहा हूँ।
0: अच्छा जी जी जी, ड्यूटी पे रहते हुए भी आपने हमें कॉल मिलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सर आपके लिए भी, और क्या काफी दिन बाद कॉल भी मिलने को मिला है, आपसे बात करने को भी काफी दिन बाद मौका मिला है।
0: जी हमें भी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपने हमें याद किया। और आपके वहाँ का मौसम कैसा है अभी?
1: मौसम सर कभी धूप तो कभी छांव, ऐसा हो रहा है सर अभी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी जी
1: हाँ, और गर्मी भी काफी तेज है।
0: ओके, बारिश अभी हुई नहीं है?
1: नहीं नहीं सर, इधर बारिश नहीं है। बारिश होगी तो सर वो अभी नुकसान ही है, बारिश का तो अभी एक महीना बाकी है सर।
0: अच्छा, तो कुछ इंतजार करना पड़ेगा बारिश के लिए।
1: जी जी बिल्कुल।
0: ओके जी, तो रवि जी कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: आज सर गाना उस्माना, क्या बोलते हैं, फूल और कांटे का।
0: ओके,
1: वो है ना धीरे धीरे प्यार तो बढ़ाना है,
0: धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। जी जी, बहुत ही प्यारा गीत आपने चुना है। और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत?
1: पहले नंबर सर आपके लिए, उसके बाद दोस्त है प्रदीप साहू जी है, नरेश प्रजापति जी है, गजराज लोधी जी है, मंगलाल चंदेल जी है, और आसिफ खान मंसूर जी है, भानु महफिल जी है, और जितने श्रोता सुन रहे हैं उन सभी के लिए रहेगा।
0: सभी को आप सुनाना चाहते हैं। तो रवि जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
1: थैंक यू सर।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश सर, नमस्कार। खम्मा घनी।
0: नमस्कार खम्मा घनी।
1: भवानी सिंह राठौड़ अर्ज कर रहा हूँ सुजानगढ़ से, राजस्थान से।
0: जी अर्ज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप?
1: जी बिल्कुल बढ़िया हूँ सर।
0: बढ़िया है, ओके
1: बिल्कुल। और आपके प्रोग्राम सुनते रहते हैं तो और ही बढ़िया हो जाते हैं।
0: क्या बात है। जी जी जी
1: आपने प्रसारण शुरू कर दिया, डबल प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं और फिर
0: जी।
1: उनको रिपीट ब्रॉडकास्टिंग भी
0: हाँ
1: होता है।
0: जी रिपीट भी होता है। जी
1: अच्छा
0: जी
1: प्रयास आपका, बिल्कुल। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ
0: जी।
1: बागरा जी आपको।
0: हाँ जी जरूर।
1: एक ये जो ऑल इंडिया में जितने भी आकाशवाणी के केंद्र हैं, सबने सोशल मीडिया पे अपने पेज बना रखे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी आईडी बना रखी हैं, तो
0: जी
1: जिसमें कुछ विशेष आपके प्रोग्राम होते हैं, जैसे फोन इन कोई और प्रोग्राम, कोई ज्ञानवर्धक प्रोग्राम रहता है, या
0: जी
1: फिर
0: जी
1: कोई
0: जी
1: हेल्थ पे जुड़े प्रोग्राम, उस पे अगर आप अपडेट डालते रहे, मतलब रोजाना के जो कार्यक्रम विवरण होता है या फिर कोई विशेष
0: ओके
1: प्रोग्राम होता है,
0: जी जी
1: तो उससे क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लिसनरों के ध्यान में रहेगा। आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम से लोग ज्यादा
0: हाँ
1: कनेक्टेड रहते हैं,
0: नहीं हमारा भी
1: तो
0: है, हमारा भी है सोशल मीडिया,
1: अच्छा।
0: हमारा सेल है वहाँ, लोग हैं वो लोग डालते रहते हैं।
1: हाँ, तो वो आप चैनल बताइए किस तरीके का है, क्या नाम है, तो उससे क्या है
0: अच्छा
1: कि ज्यादा से ज्यादा लिस्ट जुड़ सके। हाँ
0: जी जी जी ये तो बहुत ही अच्छे सुझाव दिए आपने। जी
1: बिल्कुल, जब भी अगला प्रोग्राम आप पेश करो, जब भी करो, या फिर आज का प्रोग्राम लास्ट में थोड़ी अगर आपके पास अपडेट हो तो आप जरूर बताएंगे, उससे क्या है कि
0: जी जी
1: ज्यादा
0: जी
1: से
0: जी
1: ज्यादा
0: जी
1: लिस्ट जुड़ने का मौका मिलेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो
0: हाँ जी
1: इच्छुक होता है फोन इन प्रोग्राम के, तो उनको भी मौका मिल सके जुड़ने का।
0: जी बहुत ही अच्छे सुझाव दिए आपने। हम
1: जी
0: इस
1: जी
0: पर
1: सर।
0: जरूर अमल करेंगे और हमारे जो कार्यक्रम है उसे हम अपडेट करते रहेंगे।
1: हाँ बिल्कुल
0: जी
1: सर।
0: जी जी
1: और आज गाना आज लता जी की आवाज में सुना दीजिए। हाँ, अजनबी कौन हो तुम, सबसे तुमने देखा है।
0: अरे वाह वाह वाह वाह। और
1: बस
0: किन लोगों के साथ
1: ये
0: सुना
1: लाइफ
0: था?
1: ये है, अनजानों अनजान लोगों से मिले थे, अपने बन के बैठ गए,
0: जी जी जी
1: है ना।
0: बिल्कुल। हाँ बिल्कुल
1: ये रेडियो
0: बिल्कुल
1: का अपनापन है ना।
0: बिल्कुल
1: आप कहाँ
0: बिल्कुल।
1: मैं कहाँ, लेकिन दिलों का
0: हाँ
1: जो रिश्ता है ना
0: जी
1: वो मजबूत है।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। रेडियो के जरिए हम सभी जुड़े
1: बिल्कुल
0: हुए हैं।
1: जी।
0: तो किन लोगों
1: चलिए,
0: के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत
1: तमाम
0: को?
1: सुनने वालों को, आपको तमाम सुनने वालों को डेडिकेशन
0: अच्छा
1: है ये
0: सभी
1: गाना
0: को आप
1: मेरी ओर
0: डेडिकेट
1: से।
0: करना चाहते हैं। ओके तो भवानी
1: जी
0: सिंह जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद, आपका भी कॉल शामिल करने के लिए सर।
0: ओके धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी
1: जी कैसे? हाँ
0: जी, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हो?
1: जी मैं भी बहुत बढ़िया हूँ सर।
0: ओके, और मौसम कैसा है आपके वहाँ?
1: मौसम अभी तो धूप चल रहा है सर, अभी धूप निकल रहा है, यहाँ का मौसम।
0: अच्छा,
1: वहाँ का कैसा है अभी?
0: जी हमारे यहाँ पे तो बारिश हो रही थी।
1: अच्छा अच्छा बारिश हो रही है
0: जी, हल्का फुल्का। जी जी, हम बारिश का
1: अभी
0: मजा
1: तो
0: ले रहे हैं और आप धूप का मजा ले रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा
0: जी हाँ जी हाँ जी, तो हमारे
1: हाँ
0: प्रिय श्रोता अर्जुन जी
1: जी
0: सिक्किम से कॉल कर रहे हैं।
1: सिक्किम से। जी
0: जी मैं ही आपका परिचय दे देता हूँ इस बार।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी हाँ जी हाँ जी
1: जी बिल्कुल। अभी तो आप लोगों का ये रिकॉर्डिंग का टाइम
0: जी
1: बहुत ही अच्छा बनाया है,
0: जी जी
1: दो दिन
0: हाँ
1: है ना,
0: जी, सप्ताह में 2 बार होता है।
1: सप्ताह में 2 बार। हाँ
0: जी
1: सोमवार
0: मन जी
1: शनिवार को
0: मन
1: है ना,
0: जी जी मंडे और थर्सडे को। जी
1: थर्सडे को। हाँ
0: जी जी जी तो ये प्रोग्राम जो है कल बजेगा शाम को
1: जी
0: FM में 7:35 को और मीडियम वेव में 8 बजे।
1: जी
0: जी जी
1: और मोबाइल ऐप में भी 8 बजे
0: हाँ जी
1: आएगा
0: हाँ
1: है
0: जी, मोबाइल ऐप पे 8 बजे ही आएगा। जी
1: ना?
0: जरूर सुनिएगा।
1: जी बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल।
0: कहिए कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे आज?
1: आप सुना दीजिएगा ये कौन सा फिल्म था, फिल्म का नाम तो पता नहीं है,
0: कोई बात नहीं, गाने के बोल बताइए।
1: गाने हैं गोरे गोरे मुखरे में काले काले
0: काला काला
1: चश्मा बोल
0: चश्मा।
1: दीजिए।
0: ओके ओके जी, धूप का मौसम है तो काला चश्मा
1: धूप
0: लगाना ही
1: का मौसम, काला चश्मा
0: पड़ेगा।
1: तो पहनना
0: जी जी
1: पड़ेगा
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। और किन लोग के साथ
1: जी।
0: सुनना चाहेंगे इस गीत को?
1: जी सबसे पहले आपके लिए
0: जी धन्यवाद।
1: दोस्ते मूलचंद लोधी जी, कजर लोधी जी, ओम प्रकाश जी है, भवानी सिंह राठौर जी है, दीपेन कटारी जी है, गोलू कुमार जी है, गणेश दास जी है, और अविनाश त्रिपुरा से भगवान सिंह परमा जी है, लोकेंद्र वर्मा है, और हमारे अनुप भैया है, सुभद्रा भट्टाचार्य जी है,
0: जी
1: शारदा प्रसाद प्रजापति है, ब्रश रेडियो सदा संघ से, और आशुदेव देवनाथ, संजय देवनाथ, और जितने भी तमाम दोस्त सुनते हैं कॉल करते, सभी के लिए
0: सभी
1: डिलीवरी।
0: को आप। जी जी जी ओके, तो अर्जुन जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: जी जी आपका भी धन्यवाद। खुश रहिए,
0: ओके
1: मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: owners, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The Eco family is growing. Get attractive offers up to ₹37,500.
1: Dil se dil tak baat pahunchi, milte milte sanam.
2: गीत संगीत
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में
3: दिल से दिल की बात
2: बस आपके नाम
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

तो दोस्तों सुन रहे थे आप हिंदी फिल्मी फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम हिंदी फिल्मी फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, जो कि अब हर हफ्ते 2 बार प्रसारित किया जाता है, मंगलवार को और शुक्रवार को। और अब वक्त हो चला है हिंदी फिल्मी गीतों का। चलिए बढ़ चलते हैं गीतों की ओर। आपको बताना चाहेंगे कि इस अंक में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं चंद नगमे फिल्म तुम बिन से।

0: और इन्हीं नगमों के साथ कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का आज यहीं पर समाप्त होता है। और लीजिए अब प्रस्तुत है पाश्चात्य संगीत पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज।
1: हेलो ईटानगर, वेलकम टू फाइनल डे ऑफ आर 8 डे ओजी ऑब्सबर्न स्पेशल हियर ऑन वेस्टर्न मेलोडीज। आई एम योर होस्ट कोको एंड टूडेज प्लेलिस्ट इज कॉल्ड ओजी फॉर एवर लेगेसी ट्रैक्स। दीज आर द सॉन्ग दैट डिफाइन हिज लेगेसी, द अनफॉरगेटेबल वंस दैट शेप्ड हैवी मेटल एंड इंस्पायर्ड जेनरेशंस। वेदर यू आर ए लाइफ लॉन्ग फैन और ए न्यू लिसनर, दिस सॉन्ग विल शो यू वाई Ozzy will always be the Prince of Darkness. The high energy track tells the story of a beast who rises again. Some says it's a metaphor for Ozzy himself returning to form after being doubted. It was the first album without guitarist Randy Rhoads, and Jack E. Lee stepped in with an iconic solo. Bark at the Moon showed the world that Ozzy wasn't done.

तुम बिन जाऊं कहां कि दुनिया में आके, कुछ ना फिर चाहा ना सनम तुमको चाह के। मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे यही गीत फिल्म प्यार का मौसम से, और इसी नगमे के साथ ही हमने शुरू कर लिया है सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर।

चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। बिल्कुल इसी गीत का आप आनंद ले रहे थे फिल्म मेरे जीवन साथी से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने, संगीत है राहुल देव बर्मन की और गीत के बोल लिखे हैं मजरू ने। श्रोता दोस्तों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम पर और सुन रहे हैं सदाबहार हिंदी फिल्में गीतों का कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत।

ये दिल तुम बिन लगता नहीं हम क्या करें। इसी गीत का आनंद ले रहे थे मोहम्मद रफी एवं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म इज्जत से। तो दोस्तों, सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत में अगला गाना है फिल्म जहरीला इंसान से, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 1974 में। संगीत है राहुल देव बर्मन की और गीत के बोल लिखे हैं मजरू ने। जी हाँ, इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने।

सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में चलिए आप रुख करते हैं आज के इस अंक के आखिरी नगमे की ओर, जो है लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर और उनके साथियों की आवाज में। फिल्म का नाम है हिना।

फिल्म हिना के इसी गीत के साथ ही सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आज यहीं पर समाप्त होता है। श्रोता दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के समाप्त होने के साथ साथ अब हम हमारे तीसरे प्रसारण सभा के समापन की ओर भी आ पहुंचे हैं। इस सभा के सभी कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे थे तमाम एफएम ट्रांसमीटर के सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय, तकनीकी अभियंता टी टिमटिम और मैं आपकी रेडियो दोस्त सुलोकना। जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अब हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड की ओर। आप सुनेंगे एफएम गोल्ड से रिलेट कार्यक्रम। हम आप सभी से कल सुबह पुनः मिलेंगे 5:48 से। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि। जय हिंद।

0: Good evening, listeners. Welcome to our program, Current Affairs. I'm Tina Jha. Today, we'll be talking about Somnath, Bharat's invincible spirit. To talk about Somnath and Bharat's unconquerable spirit and how in a world marked by divisions, Somnath gives us a civilizational message of shared unity and prosperity, I'm joined by two distinguished guests, Padmashree Vishnu Pandyaji, he's a historian and author, and Ms. Aditi Tandon, senior journalist. For centuries, the Somnath temple has not just as a place of faith, but as a symbol of resilience. Attacked, rebuilt, and revived time and again, its story is deeply woven into India's civilizational journey. Marking 75 years since the restored temple was reopened to devotees, Prime Minister Narendra Modi has written an article in which he says that every part of Bharat is sacred, bound together by a sense of oneness that transcends geography, and that in a world increasingly marked by divisions, this spirit of unity is more relevant than ever. The Somnath will continue to stand tall in all its glory because the sense of unity and shared civilizational consciousness lives on in the heart of every Indian, said the Prime Minister. In fact, he also remembered the countless people who sacrificed their lives to protect Somnath and those who rebuilt it generation after generation, ensuring that this beacon of faith and cultural continuity continues to stand tall. Earlier this year, the Prime Minister visited the Somnath for the Somnath Swabhiman Parv, marking 1,000 years since the first attack on this temple. And on the 11th of May this year, he will return to the Somnath to commemorate 75 years since the restored temple was inaugurated by India's first president, Dr. Rajendra Prasad. तो पहला सवाल हिस्टोरियन पद्मश्री विष्णु पांड्या जी से. पांड्या जी, सोमनाथ को अक्सर लोग सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की पहचान भी मानते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां कई बार जाते हैं और वहां का जिक्र करते हैं. आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? हमारे लिसनर्स को, हमारे श्रोताओं को अगर आप बता सके कि सोमनाथ में ऐसा क्या है जो उस जगह से लोगों का अपने आप एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है.
1: देखिए, नरेंद्र मोदी जी इतिहास बोध के आदमी हैं, वर्षों से है, आज से नहीं. और परंपरा में जिस प्रकार का एक सातत्य रहना चाहिए उसके अनुसार वो चलते हैं. उनके अनुसार जो सोमनाथ की जो बात है वो केवल मंदिर की नहीं है, उन्होंने लिखा भी है, हमारी संस्कृति विनाश से निर्माण, इस पर आधारित है. बहुत से विनाश आए, आक्रमण आए, बाकी सब कुछ हुआ, लेकिन पुनः एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, 50 बार हमने पुनः निर्माण किया. कुछ ऐसे उदाहरण भी है, जैसे कि हमारे यहाँ प्राच्य विद्या, पुरातत्व विद्या का लोथल स्थान है
0: जी,
1: 5,000 साल पहले का है. 5,000 साल में उस पर 4 बार सुनामी, समुद्र का विनाश आया, चारों बार लोगों ने इकट्ठा होकर पुनः खड़ा किया. सोमनाथ पर अनेकों आक्रमण आए और फिर भी लोगों ने बार बार उनका पुनर, केवल राजाओं ने नहीं, लोगों ने भी. मैं उनका एक उदाहरण देना चाहता हूँ. ईस्वी सन 1400 तब एक बार आक्रांताओं ने मंदिर को नष्ट किया, लोग सब इकट्ठा हुए और लोगों ने अपनी शक्ति से और अपनी भक्ति से उनका पुनर्निर्माण किया. ये सोमनाथ की बात है
0: जी.
1: तो विनाश से निर्माण, कितने पुनरोद्धार हुए, बहुत से हुए. एक दो चार उदाहरण हम दें तो गुर्जर प्रतिहारों ने निर्माण किया, राजा भोज ने निर्माण किया, राजा कुमारपाल ने किया, भीमदेव ने किया, पाशुपत आचार्य त्रिपुरांतक ने किया, महिपाल देव ने किया. एक बार तो जैन और पाशुपत दोनों, शैव दोनों मिलकर किया है. तो इसका मतलब है कि ये जो महारानी अहिल्याबाई ने भी किया, इस परंपरा की कड़ी में सरदार वल्लभ भाई आए. 1947 के नवंबर में जब जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की घोषणा हुई थी नवाब के द्वारा, उसके खिलाफ आरजी हुकूमत हुई थी और आरजी हुकूमत ने जूनागढ़ को मुक्ति दिलाई, तब उसी दिन सरदार वल्लभ भाई जूनागढ़ आए. जूनागढ़ में उन्होंने बड़ी सभा की और बाद में वो वहां से, दिवाली का दिन था, वो सोमनाथ गए. उनके साथ महाराजा जामनगर के दिग्विजय सिंह जी थे, एनवी गाडगिल थे जो मिनिस्टर थे, जनरल मुंशी थे, ये सभी के सभी लोगों ने देखा और वल्लभ भाई ने देखा कि ये जीर्ण शीर्ण मंदिर खड़ा है, किस प्रकार इसकी दशा है, इसका पुनरोद्धार होना चाहिए. तो समुद्र से अंजलि भर पानी लेकर हथेली में उन्होंने संकल्प किया. इससे पहले 1892 में स्वामी विवेकानंद आए थे
0: जी,
1: और उन्होंने ऐसी ही स्थिति में जो सोमनाथ था वहां समाधिस्थ हुए, सामने हिंद महासागर था, और तब उन्होंने सामने, वो कहते हैं वो सबसे पहला उनको दर्शन भारत माता का वो वहां हुआ था.
0: Okay, so we'll continue this conversation trying to understand about the historical significance and how it resonates also with a lot of people in so many ways. But let me bring in the Prime Minister's upcoming visit, the article that he's written just ahead of the visit, and it's quite reflective and personal in tone. So, Ms. Aditi Tandon, the question to you is that this is one of the many visits by the Prime Minister to the Somnath Temple. And in fact, this is going to be the second one on the 11th of May this very year. According to you, what do you think the Somnath Temple represents for the Prime Minister, both personally, coming, he's somebody who comes from Gujarat, but also politically?
2: See, Somnath Temple to Prime Minister Modi, as also to all the citizens of the country, basically is a representation of our country's inconquerable spirit and civilizational continuity that has gone on for more than 5,000 years now. It also, you know, sort of, Tina, represents transitioning from the memory of destruction, which we know as Vidhvans, and to national renewal, which we know as Srijan. In fact, Vidhvans and Srijan are the two phrases that Prime Minister has used in his article today as he prepares to return to Somnath to mark the 75th year of the opening of the restored temple. You will recall that it was on May 11, 1951 that then President Rajendra Prasad had gone and opened this historic and majestic restored temple. And there had been issues with respect to, you know, the approval to the then president. Prime Minister Jawaharlal Nehru was not in favor of the head of the state going and attending the inauguration of a temple. Mm-hmm. But as we know, and as also pointed out in the article that Prime Minister Modi has authored today, Somnath is not just architecture or a building or just, you know, a representation of Indian art and symbols of, you know, India's majestic temple architecture. It is much more than that. It is a representation and reflection of our very strong, indomitable spirit. We all know that the first recorded attack on Somnath Temple was in 1026 by the Mahmud of Ghazni. And you just mentioned the Somnath Swabhiman Parv, for which Prime Minister had gone to Somnath in January. I still remember for 3 days the nation had commemorated the spirit of resilience and unbroken faith and sort of cultural identity that we associate with the temple of Somnath. And today again, when we read the article that has been authored by the Prime Minister, we find those references. He speaks of how the temple of Somnath was repeatedly, you know, destroyed, and it repeatedly renewed itself. So in a sense, you know, it stands tall as a symbol of India's very strong spirit, which has remained steadfast despite several invasions. We've suffered the invasion from the Mughals. Later on, we suffered the British colonial Raj. But our inherent courage and our inherent ability to sustain and endure any kind of hardship still stands tall and speaks loudly.
0: That's true. I think the temple's journey, if you look at history, does represent a movement. So from destruction to creation, and it in so many ways shows how faith and culture can survive despite the repeated attacks. One line, Mr. Tandon, that stands out from the Prime Minister's article is where he says, Somnath's message is especially relevant in a world marked by divisions, of course, indicating towards the current geopolitical scenario. What do you see is the larger message for the Indians and the larger role that India plays as a peace-loving country in this fragmented geopolitical landscape?
2: Yeah, I think as you correctly mentioned, that the Prime Minister's larger reference beyond Somnath, you see, he uses the analogy of the temple and its spirit and its civilizational continuity to send a message of peace to the entire world and to send a message of solidarity. Basically, he's trying to tell the world the life is, no matter how hard the times are, we live in very fragmented times. You know, this is an era of chaos. We see wars everywhere. West Asia is undergoing a major churn. Earlier we saw Russia and Ukraine war, you know, being fought, and that is still going on. Right now West Asia is dominating the headlines. So the Prime Minister is basically using the symbol of the Somnath Temple to communicate to the world that India stands as a harbinger of hope and a harbinger of peace in the world. This is exactly the message that Prime Minister has delivered on every world platform whenever he's had a chance. In fact, his very famous line, "This is not the era of war," at the time of, you know, at the height of Russia-Ukraine right. war. It's the same line that he has repeated throughout. And even in the midst of West Asia, although India has always stood for peace, repeatedly we've taken a stand that dialogue is the only way forward and all stakeholders should talk to each other. So the larger message that is being communicated is of peace, that the world has to understand that eventually it has to sustain itself. And the only sustaining factor in the whole universe is peaceful coexistence. There's no other way out.
0: That's true. And that's why we've also seen the Prime Minister often connecting heritage with national confidence. Because when we take pride in where we came from, the fact that today we are not just a modern nation state, we are an ancient civilization with continuity, with cultural confidence. And therefore, I think the effort by the Prime Minister is also to make the younger generation part of, you know, this civilizational journey and make them understand why it's important to be proud, in fact, of this civilizational journey that we talk about. Ms. Tandon, what are your views on this? How important is it to reconnect, not connect, but also reconnect a lot of people who have forgotten history or who perhaps are not aware of this important aspect of the Somnath Temple and how it resonates with the current political and geopolitical scenario?
2: See, I think as has been said by philosophers, Tina, as has been said by thinkers, that those who forget the past are condemned to be, you know, betrayed by the future. So we have to stay rooted. That's the only way to look forward in life. In fact, when we draw lessons from the past, when we stay rooted to our culture and civilization, that is what serves as the lifeblood through the various vagaries of time and civilizational spaces. Because you know that India has gone through a number of rough patches and India has successfully endured all those rough patches. In fact, the hard-earned freedom was fought on the basis of Mahatma Gandhi's Satyagraha movement. And there were all kinds of forces that plunged themselves into this whole, you know, spirit of national freedom. And it was a very hard-earned freedom. So when the Prime Minister recalls the past, when he refers to symbols such as Somnath or Kashi Vishwanath Temple or, you know, Kedarnath Dham, or when he goes to temples in South India, the message that he's trying to give is that we are one despite our diversities. Ek Bharat, Shesht Bharat. In fact, you find that reference even in his article today. The message that he's trying to give to everybody, the message to the youth, of course, is that you have to draw inspiration from your past and you have to stay connected to your roots, because that will give you the energy to move forward in life and the inspiration to, you know, conquer great heights. And secondly, the message that he's giving overall to the citizens is that no matter how many fault lines, you know, different forces, certain forces that are inimical to national interests want to basically highlight, it may be in the form of, you know, religious divides, it may be in the form of language and linguistic divides, or simply in the form of North versus South debate. The fact of the matter is all these temples, from Kashi, temples on the shores, the seashores of Tamil Nadu, right from Somnath to, you know, temples in North India, we are all basically one, and they all give the message of oneness. In fact, seers from across, from South India, have traveled to Kashi. Even today you'll find on the shores of, you know, Ganga, so many seers who belong to South India.
0: That's
2: so
0: right.
2: This whole debate, which is North versus South, is frankly a manufactured debate. Until the time the youth of the country and the larger citizenry of the country understand that in the very roots of India is oneness, in the very roots is unity. You know, we all know Adi Shankaracharya and his travels, how he connected the whole, you know, north, south, west, east. So the fact of the matter is there is no north-south divide. It is all in the minds and it is all basically meant for political positioning. Really,
0: absolutely.
2: All these symbols, be it the symbol of faith like the Somnath Temple or any other symbol of our civilization, they are all basically giving one message of unity in diversity.
0: Certainly, I think you described it quite well, that despite, you know, diversity across regions, across languages, communities, it's places like the Somnath, Kashi, which create that sense of unity among Indians. There's a related question that I'm going to ask you also, is that in a fast-moving digital age, no matter the effort by the Prime Minister to reconnect history with the current generation, do you think the youngsters today will be able to, or they do connect emotionally with stories of heritage, with the stories of sacrifice? The Prime Minister does not forget to mention the sacrifices which our ancestors made, and most importantly about the story of restoration in context of the Somnath Temple.
2: See, Tina, much of what influences the youth depends on what is the line the creative thinkers and the politicians of our times take. It is not fair to blame the youth for not connecting to the roots unless you are talking to the youth about their roots. Mm-hmm. The fact of the matter is somebody has to keep hammering these messages. For instance, today we have a Prime Minister who does not, tire out about speaking of Vikas Ki Virasat. You know, in his speeches, he always invokes the past. He always celebrates freedom fighters, mentions all about, the symbols of Indian faith and civilization, not just temples, but the richness of Indian languages. We know that the Prime Minister has hailed and saluted Tamil language at the UN platform earlier. So the fact of the matter is the youth of the country are ready to receive. They are consumers of the knowledge that we disseminate to them. But this is a narrative that the political leaders of the day, the philosophers and thinkers of the day, the cinema artists of the day have to think about. For instance, just look at the revolution that we see now in the, cinematic space. All kinds of films are doing well. So many films that are rooted in our culture are doing well.
0: That's right.
2: So many films that speak of India's strategic depth and India's strategic victory over the inimical neighbors are doing well. So the fact of the matter is the digital age is the reality of our times, but that does not mean that there are no avenues of connecting the youth to their past or to their cultural richness. There are always those avenues, but that burden is with the policy makers, the politicians and thinkers of the day. Because what are we teaching the youth in the schools that is important? Are the school books being revised accordingly? Like we now know that the NCERT is paying a lot of attention to the courses that are being taught at school level, and a number of books have been revised to give so many freedom fighters their due. So that's the kind of thing I'm talking about, that there has to be a continuous revision and continuous education in relation to the richness that India boasts of. And this richness is on multiple counts, the richness of culture, of languages, the richness of our freedom fighting movement. So many national heroes that we don't know about yet, that we are coming to know about only now.
0: That's right. हिस्टोरियन पद्मश्री विष्णु पांड्या जी, आजादी के बाद जब सोमनाथ के पुनर्निर्माण का फैसला लिया गया, कई तरह का विरोध भी हुआ. इनफैक्ट जब प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके इनॉग्रेशन में गए तो तब के प्रधानमंत्री को वो पसंद भी नहीं था, ऐसा हमने इतिहास में पढ़ा है. लेकिन अगर हम देश के आत्मविश्वास के संदर्भ में इस मंदिर के पुनर्निर्माण को देखें, तो क्या वो सिर्फ मंदिर बनाना था या वो एक पहल थी देश के आत्मविश्वास को फिर से खड़ा करना? वो एक बड़ा मैसेज था कि जो टूटा है वो फिर से जुड़ेगा और वो फिर से खड़ा होगा. जिस संदेश की आज हम बात कर रहे हैं उसकी नींव कहीं ना कहीं उस दिन रखी गई थी?
1: नहीं, उसी दिन नहीं थी. मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ, ये परंपरा में हुआ है. जब से भगवान सोम ने मंदिर बनाया तब से जितने लोग आए, मोहम्मद गिजनी आए, अलाउद्दीन खिलजी आए, अलफ खान आए, मुजफ्फर गुर्जर सुल्तान आए, औरंगजेब आए, मोहम्मद बेगड़ा आया और मोहम्मद गजन भी आए, इतने आक्रमण के बाद भी क्यों खड़ा किया? ये कोई केवल मंदिर नहीं था, मंदिर तो बहुत से होते हैं और गुजरात में बहुत से मंदिरों पर को भी नष्ट किया था. लेकिन सोमनाथ ये भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का प्रतीक है. विनाश से निर्माण, मैंने कहा, वो उस आधार पर वो खड़ा है और उसी आधार पर वहां से जो कुछ बना, कुछ संकल्प हुए. इसीलिए नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक शब्द दिया था, संकल्प कथा, संकल्प यात्रा, और कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति एक संकल्प ले, गुजरात विशेष हो जाएगा. और उन्हीं दिनों में मैंने कहा सरदार वल्लभ भाई, ये एक नींव का सबसे बड़ा ऐतिहासिक आरंभ था. ये बात सही है. और सरदार वल्लभ भाई ने जब संकल्प किया कि सोमनाथ तो होना चाहिए, फिर बात दिल्ली तक पहुंच. और सभी उन दिनों के जो लेखक हैं उन्होंने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू को ये ठीक नहीं लगा. उनका कहना था कि ये बिन सांप्रदायिक हमारा देश है, इसमें कोई दैवी मंदिर को इस प्रकार पुनर्निर्माण करना सरकार के द्वारा ये ठीक नहीं है
0: जी.
1: फिर वे लोग गांधी जी के पास गए, ये घटना है, और गांधी जी ने बीच का रास्ता निकाला. उन्होंने कहा कि ठीक है सरकार मदद न दे, लेकिन लोगों के द्वारा फंडिंग करके इनको खड़ा किया जाएगा. ये बात हुई. बाद में तो गांधी जी भी नहीं रहे, सरदार भी नहीं रहे, और जब प्रतिष्ठित हो गया, मंदिर हो गया, तो राष्ट्रपति थे राजेंद्र बाबू को आमंत्रित किया गया. और ये स्पष्ट है, उन दिनों के जो सब बयान है उसमें जवाहरलाल जी ने ना कहा। वो अपने ढंग से वो सोचते थे कि भाई ये सेक्युलर स्टेट है, सेक्युलर स्टेट है, लेकिन राष्ट्रपति जी ने कहा कि सेक्युलर होने के बावजूद मैं सभी जगह जाता हूं, यदि मस्जिद का पुनरोद्धार होगा तो मैं वहां भी जाऊंगा। ये देश की संस्कृति है ऐसा। और आए और सोमनाथ का जीर्णोद्धार का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, उनके बाद बार बार ये हुआ। तो ये और फिर 47 के बाद ये यहाँ जो गुजरात राज्य 1960 में बना, तब से यहाँ की जो प्रजा थी, यहाँ के जो नेता थे, उन्होंने सोमनाथ ट्रस्ट बनाया। सोमनाथ ट्रस्ट पहले भी था, उसमें दिग्विजय सिंह जी ने बड़ा काम किया, जामनगर के महाराजा ने
0: जी।
1: और ये हमारे बहुत से ऐसे राजवी थे कि जो परम सांस्कृतिक प्रतिनिधि भी थे, संस्कृति के साथ जुड़े हुए थे। तो ये हुआ और फिर सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा ये काम हुआ। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल थे अध्यक्ष, अब नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस जो स्थान है, इस स्थान को एक ऐतिहासिक बनाने की यात्रा शुरू हुई है।
0: प्रधानमंत्री 11 मई को दोबारा जा रहे हैं वहां पर। आपने जिस तरह से हमें पूरा समझाया कि किस तरह ये प्रतीक है एकता का, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने लेख में भी किया है, लेकिन अगर आज के भारत को सोमनाथ की कहानी से अगर एक सीख ले रही हो पांड्या जी, तो वो क्या होगी? और इसको मैं जोड़ूंगी आज के जियो पोलिटिकल संदर्भ से भी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये जिक्र किया है कि आज जब दुनिया में हर जगह जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूनिटी बिल्कुल नहीं है और जिस तरह से डिविजन्स हैं कई लेवल्स पर, उस संदर्भ में उन्होंने सोमनाथ का जिक्र किया है। तो अगर एक सीख हम आज के अपने देश के और दुनिया के संदर्भ में लें तो सोमनाथ से, वो क्या होगा?
1: मेरी दृष्टि से ये केवल जियो पॉलिटिकल है नहीं है, ये जियो कल्चरल भी। और सांस्कृतिक अस्मिता हिंदुस्तान की, हम बाकी विश्व की इसमें चिंता न करें, वो वहाँ शांति होगी या नहीं होगा, वहाँ युद्ध होगा नहीं होगा, वो तो अपने ढंग से वो सोचेंगे तब होगा। लेकिन भारत वर्ष में इन दिनों में युवा शक्ति को एक राष्ट्रीय जागरयाम वयम, राष्ट्र में हम सभी जगह जागते रहे, हम जहाँ भी हो जैसे भी हो, लेकिन जागृति बहुत बड़ी आवश्यक अनिवार्य है। और इसी इतिहास बोध से लेकर नरेंद्र मोदी ने गुजरात में ऐसे दो स्थान का निर्माण हुआ है, एक सोमनाथ का है और दूसरा केवड़िया कॉलोनी नर्मदा के किनारे सरदार पटेल की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, एकता की प्रतिमा। ये दोनों ऐतिहासिक है, आज तो वहां देश देशावर से लोग जाते हैं। तो ये इनकी इतिहास बोध की दृष्टि से ये हो रहा है। और आपने एक सवाल विदुषी को पूछा था कि युवा वर्ग इसमें कैसे जुड़ेगा, मेरी दृष्टि से और मेरे अनुभव से, मैं अध्यापक भी रहा हूं, मैं बोलता भी हूं।
0: रीसेंट टाइम्स वाज यू लाइक राइटली मेंशनड, गिवन द प्राइम मिनिस्टर्स आउटरीच एज वेल एज द काइंड ऑफ एफर्ट्स दैट हैव बीन अंडरटेकन इन रीसेंट इयर्स, वी डू सी दैट देयर इज अ रिन्यूड कॉन्फिडेंस अमंग इंडियंस अबाउट देयर नेशनल आइडेंटिटी, अबाउट देयर कल्चर, अबाउट देयर रूट्स, एंड वी आर ऑल्सो प्रोजेक्टिंग आवर हेरिटेज ग्लोबली through yoga, through Buddhism, through spirituality. Do you also see Somnath as part of that larger story in helping India project its cultural heritage, its civilizational on the global stage?
2: Yeah, in fact, it's very interesting with the question that you asked, the fact that the Somnath temple is located in Gujarat, and also the fact that Gujaratis are very vibrant diaspora members and they are brand ambassadors of the Indian story outside. And you spoke of soft power, of course, not just the Somnath temple, but so many other rejuvenated temple complexes in the country. You can take the Char Dham Yatra, then you can take Kashi Vishwanath temple, which has been redone fully. And in fact, if you look at the statistics, you will realize, Tina, that not just domestic tourism has been boosted through this religious rejuvenation, but a lot of international tourists are also coming back. You know, a lot of Indians only live abroad who are now coming back to revisit these places of worship, all these religious shrines. Okay. So that's one very important thing. And of course, Somnath Temple is part of the larger soft power segment of India. Our rich and ancient civilization, our democratic values, and our growing global influence through yoga, which you mentioned. Then we have Bollywood. Our cuisine is doing wonders all across the world. In fact, recently, Indian cheese also made global headlines by winning two major awards at a Brazilian event. That was the first ever time.
0: Right.
2: So, you know, culture and civilization straddle so many different sectors. It's not just faith or religion. It's food. You know, it's our language, it's our practices, it's our lifestyle. So it's across sectors.
0: your personal thoughts on how we can make our civilizational values coexist, or sort of say make it a strength in today's global climate, which helps India achieve its ambitious goals, and it helps us grow as individuals, balancing between history and modernity and the future, maybe balancing between history and the future.
2: See, the fact of the matter remains that, you know, the adaptive nature of Indians, as we are, you know, Bharatiya Sabhyata, which we call, this adaptive nature has taken us through so much, and we have not, you know, really fallen to the vagaries of time or to the vagaries of conquerors. Civilization remains our greatest strength, and it is particularly important for the fact that it has helped us endure and, you know, stay strong. It's basically, Tina, our living heritage. It combines ancient wisdom, we can call it by different names, the Vedas, the Upanishads, with modern progress. See, which society can adapt as fast and as beautifully as our Indian society? We go back 5,000 years, and yet we are, you know, today commanding 50% of digital transactions in the world are happening in India. So we are the same society, old and yet new.
0: Thank you, ma'am. It's been wonderful hearing your insights on this very important topic. बल्कि मेरा एक सवाल विष्णु पांड्या जी, सोमनाथ आपने बताया कि सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, भारत के लिए निरंतरता का भी प्रतीक रहा है, तो ऐसे में हमें ऐसे और क्या कदम उठाने चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास सिर्फ किताबों तक ही सीमित ना रह जाए, ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे वो इतिहास को महसूस कर सकें और उसे बखूबी समझें।
1: अग्रता क्रम में तो वैसे इतिहास का पुनर्लेखन और चिंतन होना चाहिए, ये एक बात। दूसरी बात ये है कि अध्यापकों को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए इतिहास के बारे में, जो नहीं है आज, ठीक ढंग से इतिहास सिखा जाए, दूसरी बात। तीसरी बात, लोग युवा वर्ग तक कम्युनिकेट होने के लिए ऐसे व्याख्यान भी हो सकते हैं, धर्मोपदेशक वाले या प्रोफेसर या फिलोसोफर, बाकी सब हो कर सकते हैं। हमारी नाट्य संस्कृति जो है उनको पुनर्जीवित करके ऐसी घटनाओं पर नाटक होने चाहिए। फिल्मों का भी बड़ा सशक्त माध्यम है, डॉक्यूमेंट्रीज है, उनके द्वारा भी बार बार, एक बार नहीं बार बार इसका प्रस्तुतिकरण हो, तो धीरे धीरे धीरे, और मैंने, मेरा अनुभव है कि जब युवा वर्ग के सामने बोलता हूँ तो उनकी आंखों में एक प्रकार की एक स्पिरिट आ जाता है कि हमें कुछ और भी चाहिए
0: जी।
1: सच बात है, उन लोगों तक हम पहुंचे नहीं, पहुंचना चाहिए। ये धीरे धीरे व्यापक रूप से पूरे देश में हो सकता है। तो मेरे दृष्टि से पुनः एक बार हमारी परंपरा, 5000 साल से भी पहले शायद, ये परंपरा में जो विनाश से निर्माण की एक भावना है, संस्कृति इसी आधार पर टिकी हुई है। सब सोमनाथ में भी जब उत्खनन हुआ है, चार सभ्यताएं सिविलाइजेशन की अवशेष मिले हैं, तो कितने हमारी सभ्यताएं दीर्घकालीन होती होगी, इसका भी हमें ख्याल करना चाहिए, और इसके लिए योग्य माहौल बनाकर ये हम कर सकते हैं, और आकाशवाणी इसमें सबसे ज्यादा निर्णायक बन सकती।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कि सोमनाथ क्यों इतिहास में ही नहीं बल्कि आज के संदर्भ में भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और खास करके युवा वर्ग के लिए जरूरी है कि हम

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। केरला में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ECI नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय

0: अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की पांचवी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। और खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Senior BJP leader Suvendu Adhikari will be the new Chief Minister of West Bengal. BJP Legislature Party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata today, paving the way for him to become the first BJP Chief Minister of the state. Addressing the media, Union Home Minister Amit Shah said Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
2: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
3: The election process was completed just a few days ago. Around 8 proposals and supporting nominations were received and all of them were in favor of the same name. Sufficient time was also given for any other nomination but no second name was proposed. Therefore, as the central observer, I declare Suvendu Adhikari as the elected leader of the West Bengal Legislative Party.
2: विधान मंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: Mr. Shah expressed gratitude to people for giving a strong verdict to the BJP despite numerous instances of violence and brutality. Mr. Shah further said that the expectations the people of Bengal have placed on them and the mandate they have given with hope and trust, they will make every effort to ensure that their faith is not broken in any way. Addressing the meeting, the Chief Minister designate Suvendu Adhikari said, whatever guarantees have been announced by Prime Minister Narendra Modi, the BJP government in the state will fulfill all responsibilities. Tomorrow morning, the oath-taking ceremony of the government will be held at the Brigade Parade Ground. In Tamil Nadu, the uncertainty over formation of government under TVK Chief C. Joseph Vijay continues. The new twist came as IUML has rejected the reports of its support to TVK to form the government. In another development, reports are also coming that the swearing-in ceremony, which was to take place tomorrow, will not be held. Earlier, TVK had claimed that the actor-turned-politician is all set to form the government as he again met the governor today and state claimed to form the government, saying that he has the majority numbers. The National Democratic Alliance chief ministerial candidate N. Rangasamy met Lieutenant Governor K. Kailasanathan and stake claim to form the next government in Puducherry. Mr. Rangasamy handed over letters of support from the majority of the MLAs to the Lieutenant Governor. NDA Alliance MLAs and Alliance leaders accompanied him. Earlier, a meeting of the NDA Alliance partners elected MLAs elected Rangasamy as the chief ministerial candidate. The Supreme Court today expressed concern over the rising drug menace situation in Punjab. The apex court called for a fundamental shift in how the state tackles narcotics, saying that human toll is alarming. A bench comprising Chief Justice Surya Kant and Justice Joymala Bagchi referred to a recent incident involving a mother who lost all her 5 sons to drug addiction. The bench also pulled up state police for focusing on low-level offenders for publicity while allowing major traffickers to remain at large. The apex court also highlighted the huge pendency cases lodged under the Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances, NDPS Act. India and Singapore have stressed the importance of bilateral cooperation in countering terrorism as strategic partners. The fifth meeting of the Joint Working Group on Combating Terrorism and Transnational Crime between India and Singapore was held in New Delhi yesterday. The Joint Working Group discussed cooperation in combating terrorists and terror groups listed by the UN Security Council 1267 Sanctions Committee. It also agreed on the need to further strengthen information sharing to enhance timeliness and effectiveness of responses to cross-border threats. The health ministry has activated precautionary surveillance measures amid low global risk assessment of hantavirus cases. Sources said the health ministry is closely monitoring the evolving situation relating to reported cases of hantavirus infection on board the cruise ship MV Hondius. This is being done in coordination with the National Center for Disease Control, Integrated Disease Surveillance Program, World Health Organization and other international health authorities. The government has said domestic LPG supply across the country is smooth and no dry out has been reported at any distributorship. Addressing an interministerial briefing in New Delhi, Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said that the government's efforts has been to ensure that domestic consumers do not face any shortage of gas and that prices remain stable amid the evolving situation in West Asia. India's Simranjeet Kaur advanced to the semi-final of the women's recurve individual event at the Archery World Cup Stage 2 in Shanghai today. Simranjeet defeated her Chinese Taipei counterpart Feng Yuzhu 6-0 in straight sets in the quarterfinal. And with that, we end this news bulletin.
4: Namaskar. Akashvani se Vishw Darpan ke saath main Shakti Singh. भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझाकरण बढ़ाने पर सहमत हुए। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत और अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% सार्वभौमिक शुल्क को अवैध घोषित किया। इंडोनेशिया में आज सुबह माउंट डुकोना ज्वालामुखी के फटने से 3 लोगों की मौत। तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में विश्व कप के दूसरे चरण में महिला रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति दोहराई। समूह ने पहलगाम आतंकी हमले और लाल किले आतंकी घटना की भी निंदा की। भारत और सिंगापुर ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझाकरण बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रीम अल हाशमी के साथ अबुधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के साथ संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान अस्थिर दुनिया में इन संबंधों का उपयोग करके दोनों देशों के लिए शक्ति और स्थिरता का स्तंभ बनना चाहिए। त्रिनिदाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में ये लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 10% वैश्विक शुल्क को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। ये व्हाइट हाउस की व्यापार नीति के लिए एक बड़ा झटका है। एक रिपोर्ट।
0: रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने 2-1 के विभाजित फैसले में कहा कि प्रशासन 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत शुल्क को उचित ठहराने में विफल रहा। अदालत ने कहा कि सरकार कानून के तहत आवश्यक गंभीर भुगतान संतुलन संकट को साबित नहीं कर पाई। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन द्वारा लागू किए गए आयात शुल्कों के व्यापक सेट को अमान्य घोषित कर दिया गया। धारा 122 के अंतर्गत अमरीकी राष्ट्रपति विशिष्ट परिस्थितियों में कांग्रेस की मंजूरी के बिना 15% तक शुल्क लगा सकता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से जया भारती।
4: सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना ना करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
5: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में एक

0: 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ यह सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार ना हो। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती है। उन्होंने बताया कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को लेकर भी बातचीत हुई। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में रात भर चले सैन्य तनाव के बाद नाजुक संघर्ष विराम पर दबाव पड़ गया है। अमेरिका की सेना ने पुष्टि की है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से उसके नौसैनिक बलों पर हमले हुए। अमेरिकी नौसेना ने इसका जवाब दिया। 3 अमेरिकी नौसेना विध्वंसक पोत हमले के बीच सफलतापूर्वक जलडमरू मध्य से गुजर गए। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी जहाजों को कोई नुकसान नहीं हुआ जबकि अमेरिकी सेना ने हमलावरों को भारी क्षति पहुंचाई। वॉशिंगटन का कहना है कि प्रस्तावित शांति ढांचे पर तेहरान की प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए संघर्ष विराम तकनीकी रूप से अभी भी लागू है। ईरान की सेना ने कहा कि अमेरिकी बलों ने तटीय जल क्षेत्र में एक ईरानी तेल टैंकर और संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा बंदरगाह के पास एक दूसरे जहाज को निशाना बनाया। रणनीतिक केशम द्वीप और बंदर अब्बास के पास भी विस्फोटों की सूचना मिली है। ईरान ने दावा किया है कि उसकी सेनाओं ने शत्रुतापूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी सरकार समाचार एजेंसी के अनुसार तेहरान के ऊपर ईरानी हवाई रक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी गई है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इंडोनेशिया में माउंट डुकोनो ज्वालामुखी फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। राहत और बचाव दल ने विस्फोट के बाद लापता हुए 20 पर्वतरोहियों के समूह में शामिल सभी जीवित लोगों का पता लगा लिया है। पुलिस के अनुसार 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों का कहना है कि पर्वतरोह पर प्रतिबंध के बावजूद ये समूह ज्वालामुखी पर चढ़ाई कर रहा था। डुकोनो इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है जो पर्वतरोहियों और पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। ब्रिटेन सरकार के अनुसार क्रूज जहाज MV होडियंस पर हुए हंता वायरस के प्रकोप से 3rd ब्रिटिश नागरिक में भी संक्रमण के लक्षण दिखाई दिए हैं। मरीज अटलांटिक महासागर के सुदूर द्वीप ट्रिस्टन दा कुन्हा में है। इस संक्रमण की पुष्टि 2 अन्य ब्रिटिश पुरुषों में भी हुई है। अब तक हंता वायरस के 5 मामलों की पुष्टि हो चुकी है जिनमें क्रूज पर सवार 3 यात्रियों में से एक की मौत भी शामिल है। बुल्गारिया की संसद ने रुमेन रादोव को नए प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दे दी है। यह फैसला देश में राजनीतिक अस्थिरता समाप्त करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए लिया गया। 62 वर्षीय श्री रादोव इससे पहले राष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके हैं। श्री रादोव ने अपने दूसरे कार्यकाल के समाप्त होने से कुछ महीने पहले इस वर्ष जनवरी में राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कहा है कि दोनों देशों को एक दूसरे की आवश्यकता है। ये बातचीत रूबियो की इटली और वेटिकन की 2 दिवसीय यात्रा के बाद हुई जब अमेरिका के शीर्ष राजनयिक ने ईरान में अमेरिका इसराइल युद्ध को लेकर हफ्तों से जारी तनाव के बाद इटली और वेटिकन में 2 दिनों की चली सुलह वार्ता को समाप्त किया। श्रीलंका के पूर्व केंद्रीय बैंक गवर्नर अजीत निवार्ड केबराल के खिलाफ कोलंबो उच्च न्यायालय में एक मामला फिर से दायर किया गया है। श्री केबराल पर आरोप है कि उन्होंने अदालत के उस आदेश का पालन नहीं किया जिसमें उन्हें 3 महीने के भीतर 10 करोड़ रुपए जमा करने थे। CIABOC ने कहा है कि यह मामला श्रीलंका के भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम की धारा 67(5) के अंतर्गत विवादास्पद ग्रीन बॉन्ड निवेश के मामले में संबंध फिर से दायर किया गया है। बांग्लादेश में आज नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में साहित्य, संगीत और मानवतावादी में उनके अमिट योगदान को याद किया गया। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के 2रे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव अपने अपने व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरनजीत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू झू को 6-0 से हराया। वहीं साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रेलिया के निको विनर को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। सिमरनजीत के सामने अब सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की क कांग चियोंग की चुनौती होगी। वहीं साहिल सेमीफाइनल में फ्रांस

के निकोलस गिगार्ड का सामना करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझाकरण बढ़ाने पर सहमत हुए। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत और अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% सार्वभौमिक शुल्क को अवैध घोषित किया। इंडोनेशिया में आज सुबह माउंट डुकोनो ज्वालामुखी के फटने से 3 लोगों की मौत हुई। तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में आयोजित विश्व कप के दूसरे चरण में महिला रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।